एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। मंगल ध्वनि के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: ये आमिर चैनल है, सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

0: इस संख्या में लगकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
3: कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम केवल आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं। बाहर से कुछ भी हमें मिलता है वो केवल एक प्रेरक का कार्य ही करता है। भारत में गुरु का अर्थ अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति होता है। गुरु का महत्व भारत में केवल इसीलिए है क्योंकि गुरु ही किसी व्यक्ति को स्वयं से पहचान करवाता है। सभी गुरुओं की अपनी एक विशेषता हुआ करती है और उनका शिक्षा देने का तरीका भी भिन्न होता है। गुरु की सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है कि गुरु को प्रसन्न किया जाए और स्वयं को विनम्र बनाया जाए। हमारे यहाँ शिक्षा विनम्रता का पर्याय है। व्यक्ति जब तक अहंकार में रहता है वो गुरु को समझ नहीं पाता और ना ही वो स्वयं को समझ पाता है। उस समय गुरु और शिष्य के बीच माँ बाप या कोई कानून नहीं होता, क्योंकि गुरु प्रत्येक शिष्य से भिन्न भिन्न व्यवहार करता है ताकि प्रत्येक शिष्य के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को वो खोज सके। और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो अपनी पहचान के साथ साथ एक और मन को पहचान पाता है और उसे घड़ पाता है। युद्ध कौशल के साथ अर्जुन, भीम और कर्ण अपनी छवि रखते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले स्वयं को जाना और शायद इसलिए क्योंकि वो अपने गुरु को पहचान पाए थे। तो शिक्षा का अर्थ क्या है? स्वयं को खोजने का प्रयास करना, एक ऐसी विधि जहां स्वयं से मिलन होता है। ये एक विधि ही है और इस विधि को पाने के लिए आपको स्वयं तक पहुंचना होगा। आप भजन करें, ध्यान करें, प्रयोग करें, ये सभी शिक्षा है। जब आप

0: एम से परिचित होते हैं तो आप एडिसन बनते हैं, न्यूटन बनते हैं, वाल्मीकि, तुलसीदास और व्यास बनते हैं, क्योंकि ज्ञान भीतर भी है और बाहर भी।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिया चैनल से।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। वंदना कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए ये देश गान।

अभी आप आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, चूंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत

भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

अभी आप रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का यह माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज के शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में ठीक 6:45 पर आप सुनेंगे खेती नी बात। प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मोहनलाल और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे वातायन। वातायन के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राकेश शास्त्री से वार्ता। वार्ता का शीर्षक होगा महाकवि कालिदास का ग्रीष्म वर्णन। प्रातः 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ दिल से। राजस्थानी लोक संगीत का प्रसारण समय

होगा 8:45, प्रातः 9:10 और प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत। प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। प्रातः 7:30, प्रातः 9:30 और दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम।

हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत। शाम 7 बजे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। शाम 5:30 और रात्रि में 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। और रात्रि में 10 बजे आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। इसके अलावा समय समय पर आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली और जयपुर केंद्र से।

0: अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती नी बात।
1: खेती नी बात कार्यक्रम हमरवावरा सब भाई ने सौरा डिओवाल जी भाई नो राम राम। किसान भाइयों देखो सौरा ऊपर अपने सब भाई भेगा थई ने हवारनी योजना बनावीने एना अनुसार दाड़ाना जे काम है ये आपणे करवा खेतर में नेक रहा। अवरे आना समय में किसान भाइयों देखो जे जायद में काकड़ानी खेती करी मिली है एनो हवे बीज काढवानो जे समय साली जो है ने किसान भाई लाग्या भी थका है बीज काढ़ी रहा है ने काम जे है ये युद्ध स्तर पर थई जो थकू है। किसान भाइयों निवेदन ये है कि हवार हवार में जल्दी उठीने आ खेतरनो ते काम है बीज काढवानो धोवानो हुकबवानो आ सब व्यवस्थित तरीका थे कि शरीर हंबारी ने हवारना समय में ने हादना समय में आपने करवो पड़ेगा। आम तो देखो आना क्षेत्र ना किसान जे हैं ये सब जाने हैं कि देखो आटलो ताप पड़ी रो है तो आना ताप में तो ता काम थावा थे कि रो एटले रिस्क लईने आपने काम नहीं करवो। बाकी ठंडा पौर में हवार में ने हाज में अपने आजे बीज काढवानो काम है किसान भाई करी शके। किसान भाइयों देखो आने हाथे हाथे आज आपणे सोरा ऊपर वात करी रहा कि आ अघाड़ी आबावारी वर्षा ऋतु है एनी वर्षा ऋतु ने पहले आपणे आजे भूमिना कटावना उपाय जे करवा है ए अवरथकी व्यवस्था आपणे करवी पड़ेगा। किसान भाइयों भूमि कटाव जेने आपणे मृदा अपरदन भी कहे हैं आने रोकवाना किसान भाई घणा उपाय कर रहे हैं एना में आज आपणे सोरा ऊपर वात भी करी रहा कि आना में कारगर उपाय ई है कि वर्षा ऋतु शुरू था तब पहले अपने उपाय प्रभावी करवा पड़ेगा। वृक्षारोपण ने वानस्पतिक आवरण नी बात करो किसान भाइयों ढलान वाली जमीनों नदियों ना किनारा या खाली खेतर में पेड़ पौधा ने झाड़ियां लगाड़वी जरूरी है किम के पेड़ नी जड़े जे हैं ये मिट्टी ने मजबूती तक ही पकड़ी ने रहे हैं ताकि

अभियान आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत मोहनलाल और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: अभी अब आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत मोहनलाल और साथियों के गाए वागड़ी लोक भजन सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंट 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:20 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। वातायन में आज आप सुनेंगे राकेश शास्त्री से वार्ता। वार्ता का शीर्षक है महाकवि कालिदास का ग्रीष्म वर्णन।
1: भारत को निसंदेह प्रकृति का विशाल क्रीड़ांगन कहा जा सकता है। यहाँ समय समय पर अपना रूप दिखाने वाली वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ये 6 ऋतुएं अद्भुत समा बांध देती हैं। जबकि संसार के अन्य देशों में ऋतुएं इतना मनोमुग्धकारी रूप धारण नहीं करती। वस्तुतः यहाँ ऋतुओं का परिवर्तन बड़ा ही सामयिक, मनभावन और उपयुक्त होता है। देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता और भयावहता इस धरती के सभी प्राणियों को विचलित कर देने वाली होती है, जबकि इसी की उष्णता में सावन की हरियाली भी छिपी रहती है। यदि हम संसार के किसी भी साहित्य का अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि कवियों का मन इस ऋतु की भयावहता के कारण इस ओर कम ही आकर्षित हुआ है, जबकि प्रकृति के चितेरे अलौकिक प्रतिभा के धनी सरस्वती के वरद पुत्र कविकुल गुरु कालिदास ने तो अपने काव्यों में प्रायः सभी ऋतुओं का मन भावन वर्णन किया है। किंतु ग्रीष्म वर्णन में तो अपने लेखनी का स्पर्श करके मानो उन्होंने 4 चांद ही लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, अपने प्रसिद्ध गीति काव्य ऋतु संहार का प्रारंभ तो उन्होंने ग्रीष्म वर्णन से ही किया है तथा इसके 28 श्लोकों में ग्रीष्म का सुंदर चित्र खींचा है। इस ऋतु में मन को आह्लादित करने वाली वासंती छटा के पश्चात भगवान भास्कर अपने प्रचंड किरणों से संपूर्ण पृथ्वी को संतप्त करते हैं, जिसकी प्रचंड गर्मी में सभी प्राणी बेचैन हो उठते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी भी छाया और शीतल जल उन्हें नूतन जीवन शक्ति प्रदान करने वाला होता है। इस ऋतु में सूर्य देवता के वृष राशि में आने पर यह तपन असह्य हो जाती है। नदी नाले और बड़े बड़े सरोवर कम जल वाले हो जाते हैं। सूर्य की किरणों से तपी हुई भूमि अग्निकुंड के समान प्रतीत होती है एवं गर्म जल, गर्म तेज वायु के कारण प्रत्येक प्राणी का जीवन दूभर हो जाता है। प्यास के कारण सूखे कंठ वाले जीव जंतु हांफते हुए जल की खोज में इधर उधर भटकते हैं। ग्रीष्म ऋतु की इसी संपूर्ण विशेषता का चित्रात्मक वर्णन महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में यत्र तत्र किया है।

मोरवशीयम नाटक के द्वितीय अंक के अंत में प्रयुक्त ग्रीष्म वर्णन इस कथ्य की पुष्टि करता प्रतीत होता है। उष्णालु शिशिरे निषीदति तरोर्मूलाल वाले शिखी निर्भिद्योपरिकर्णिकारम कुलान्यालीयते षट्पदः।

अंजरशुकः क्लांतो जलम याचते। अर्थात यह मोर गर्मी से घबराकर पेड़ की जड़ के थावले में आकर बैठ गया है। यह भौरा कनेर की कली का मुंह खोलकर उसमें छिपने का प्रयास कर रहा है। यह जलकुक्कुट तालाब का गर्म पानी छोड़कर तट पर खिली हुई कमलिनी की छाया में जाकर बैठ गया है। महल के पिंजरे में पड़ा हुआ यह प्यासा तोता पानी की मांग कर रहा है। इसी प्रकार अपनी प्रथम कृति मालविकाग्नि मित्रम के द्वितीय अंक के अंत में महाकवि कालिदास ग्रीष्म ऋतु का मनभावन चित्रण कुछ इस प्रकार करते हैं। पत्र छाया सुहंसा मुकुलित नयना दीर्घिका पद्मिनी नाम सोधान्यत्यर्थतापाद बलभिपरिचय द्वेषिपारावतानी बिंदुक्षेपान पिपासु परिसरत क्षिकी भ्रांतिमन्वार यंत्रम सर्वैरुस्रै समग्रैस्त्वमिव नृपगुणैर्दीप्यते सप्त सप्तिः। अर्थात ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में हंस बावड़ियों में स्थित कमल की पंखुड़ियों की छाया में आंखों को मूंदकर विश्राम कर रहे हैं। ग्रीष्म की धूप से महल इतना अधिक तप गया है कि छज्जों पर कबूतरों के लिए बैठना ही मुश्किल हो गया है। इसी प्रकार गर्मी में प्यासे मोर चलते हुए रहट से पानी की बूंदे पीने के लिए उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। इस ग्रीष्म ऋतु में अपनी सभी किरणों को समेटकर भगवान भास्कर ठीक उसी प्रकार दीपित हो रहे हैं जैसे राजा कोई राजसी गुणों से चमकता है। यहाँ वर्णित ग्रीष्म ऋतु का प्रत्येक चित्र महाकवि कालिदास की नव नवोन्मेषिनी काव्यात्मक प्रतिभा का सुंदर परिचायक कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का तो प्रारंभ ही महाकवि ने ग्रीष्म ऋतु से किया है, जो उनकी ग्रीष्म प्रेमाभिव्यक्ति का सुंदर निदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि इस वर्णन में उन्होंने इसे अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली ऋतु की संज्ञा प्रदान की है। उनके अनुसार इस ऋतु में जलों में अत्यधिक स्नान करना अच्छा लगता है। मन के सरोवरों में लाल कमल खिले रहते हैं, जिनकी भीनी भीनी सुगंध को लेकर वन की वायु चारों ओर मनमोहक वातावरण की सृष्टि करती है। वृक्षों की घनी छाया में सुख प्रदान करने वाली गहरी नींद आती है। और सबसे महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय बात यह है कि इस ऋतु के दिन सूर्यास्त का समय अत्यंत रमणीय हो जाता है। सुभग सलिलावगा पाटल संसर्गी सुरभिवन वाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीया। इतना ही नहीं, इस ऋतु में शिरीष के पुष्प अपनी बहुरंगी छटा से मदमस्त भौरों एवं स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिन्हें वे अत्यधिक कोमल भावना के साथ अपने कानों में आभूषण के रूप में धारण करती हैं। भौरे उनके सुकुमार केसर से मधु का धीरे धीरे पान करते हैं। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार केसर शिखानी अवतन संयंति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। ग्रीष्म ऋतु की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह ऋतु जंगल के हिंसक प्राणियों में भी हिंसा के भाव को समाप्त कर देती है और वे एक दूसरे के कष्टों को दूर करते हुए परस्पर आश्रय देने वाले बन जाते हैं। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति महाकवि अपने ऋतु संहार नामक गीति काव्य में इस प्रकार करते हैं। रवेर मयूखै रवितापितो वृषम विदयमान पथितप्त पांशुभिः अवांग मुखो

0: जिम्मगतीश्वशन्मुः फणिमयूरस्य तले निषीदति। अर्थात सर्प और मोर की शत्रुता इस संसार में अत्यधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि मोर तो सर्प को खा ही जाता है, किंतु ग्रीष्म ऋतु की तेज गर्मी से व्याकुल सर्प अपना मुंह नीचे छिपाकर मोर की छाया में कुंडली मारकर बैठा हुआ है, तथा मोर भी गर्मी के कारण उसे कुछ नहीं कह रहा है। इस काव्य में अन्यत्र भी महाकवि कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु में वन्य प्राणियों की दशा का स्वाभाविक एवं कमनीय वर्णन इस प्रकार किया है। स्वसिति विहग वर्ग शीर्ण पर्ण द्रुमस्थ कपिकुलम उपयाति क्लांतम अद्रेर निकुंजम भ्रमति गवय यूथ सर्वतस्तोयमिच्छन् शरभकुलम अजिम्मम प्रोद्धरत्यम्बुकूपात्। अर्थात गर्मी के कारण वृक्षों के पत्ते झड़ गए हैं, उन पर बैठी हुई चिड़ियां गर्मी के कारण हांफ रही हैं, सूर्य की तपन से व्याकुल बंदरों का झुंड पर्वतों की गुफाओं में घुसा जा रहा है, प्यासा पशुओं का समूह पानी की खोज में जंगल में इधर उधर भटक रहा है, आठ पैरों वाला शरभ का झुंड कुओं से आसानी से पानी पी रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली ग्रीष्म ऋतु में भी सौंदर्य का अवलोकन करने वाले नव नवोन्मेषिनी प्रतिभा के धनी महाकवि कालिदास ने इसके प्रत्येक पक्ष का अत्यंत सुंदर एवं चित्ताकर्षक वर्णन किया है। अतः हम सभी को इस ऋतु का हृदय से स्वागत करना चाहिए।
1: अभी आप वातायन के अंतर्गत राकेश शास्त्री से वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का शीर्षक था महाकवि कालिदास का ग्रीष्म वर्णन। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गीत मुन्नाडे और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में था। प्रदीप के बोल थे संगीत दत्ताराम का था।

ये रास्ते ही प्यार की फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में था। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत रवि का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में संजोग फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
1: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
4: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य

0: स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग एक साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह स्रिये फेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोक सत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिन्दुस्तान की सुर्खी है धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी यह परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा।

0: उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रूपये महंगे, सीएनजी के दाम 2 रूपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी, ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप विविध भारती के मुंबई केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिल से।

कुछ देर से कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ख्याति गांधी का नमस्कार। श्रोताओं, आज के कुछ देर से कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे संस्कृत वाक्य की जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का सार है, विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनम्रता देती है। दोस्तों, ज्ञान सिर्फ डिग्री पाने का माध्यम नहीं बल्कि इंसान को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। सच्ची शिक्षा वही है जो हमारे भीतर नम्रता, संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सम्मान पैदा करे। अक्सर हम सोचते हैं कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ सफल होना या नौकरी पाना है, लेकिन हमारे भारतीय चिंतन में विद्या का अर्थ बहुत व्यापक है। यहां विद्या का अर्थ है जीवन को समझना, अपने व्यवहार को सुंदर बनाना और अपने व्यक्तित्व को निखारना। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही शांत और विनम्र होता जाता है। वैसे ही जैसे कि फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है, इसी तरह सच्चा ज्ञानी भी कभी अहंकार नहीं करता। आगे और चर्चा करेंगे, उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हम सब ने जीवन में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनका व्यवहार इतना सुंदर होता है कि उनके सामने बड़े बड़े शिक्षित लोग भी छोटे लगने लगते हैं। गांव की कोई दादी

जिसने कभी स्कूल का चेहरा ना देखा हो, लेकिन जिसकी बातें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी जाती हो। कोई किसान जो मिट्टी से जुड़ा हो लेकिन इंसानियत में बहुत बड़ा हो। कोई साधारण मजदूर जो अपने व्यवहार से सबका दिल जीत ले, यही असल में विद्या है। विद्या का सबसे पहला असर इंसान की भाषा और व्यवहार में दिखता है। अगर किसी के पास ज्ञान है लेकिन वह दूसरों को अपमानित करता है, हर समय खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है, तो समझ लीजिए वहां जानकारी तो है लेकिन विद्या नहीं, क्योंकि विद्या का स्वभाव विनम्रता है। आज के समय में सोशल मीडिया और प्रतियोगिता के इस दौर में हर कोई खुद को आगे दिखाना चाहता है। लोग अपनी उपलब्धियों को दिखाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि विनम्रता कहीं पीछे छूटती जा रही है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जीवन में असली सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देता है।

दोस्तों, दुनिया में ऐसे अनेक लोग हुए जिन्होंने अपनी विद्या और उपलब्धियों से इतिहास रचा, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी विद्या या उनकी उपलब्धियां नहीं बल्कि उनका विनम्र स्वभाव था। जब भी हम उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं तो उनके ज्ञान के साथ साथ उनकी सादगी और उनकी नम्रता की भी याद आती है। आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि थोड़ी सी सफलता मिलते ही इंसान बदलने लगता है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, लेकिन याद रखिए कि ऊंचा वही उठता है जिसके भीतर विनम्रता बची रहती है, क्योंकि अहंकार इंसान को अकेला कर देता है जबकि विनम्रता लोगों को जोड़ती है। कई बार हम सोचते हैं कि विनम्र होने का मतलब है खुद को छोटा समझना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विनम्रता का अर्थ है अपनी उपलब्धियों के बावजूद दूसरों का सम्मान करना, यह समझना कि हम चाहे जितना भी सीख लें, सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ बाकी रहता है।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: दोस्तों आज का युवा बहुत प्रतिभाशाली

है। उसके पास तकनीक है, जानकारी है, अवसर है और सपने भी बहुत बड़े हैं। लेकिन इस तेज रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वह है विनम्रता। आज सोशल मीडिया के दौर में तुलना बहुत बढ़ गई है। हर कोई दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है, कोई अपनी नौकरी दिखाकर तो कोई अपनी लाइफस्टाइल और सफलता दिखाकर। ऐसे माहौल में कई बार युवाओं के भीतर अनजाने में अहंकार आ जाता है या फिर हीन भावना पैदा हो जाती है। लेकिन सच्ची शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हर इंसान का सफर अलग होता है। युवाओं के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सफलता सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन आपके पास धैर्य नहीं है, दूसरों के लिए सम्मान नहीं है, तो आपकी सफलता अधूरी है। कई बार युवा सोचते हैं कि विनम्र बनने से लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है वही विनम्र रह सकता है। जो भीतर से असुरक्षित होता है वही हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में हमारा शिक्षक होता है। कभी कोई छोटा बच्चा हमें मासूमियत सिखा देता है, तो कभी कोई बुजुर्ग धैर्य सिखा जाता है, तो कभी कोई गरीब इंसान संतोष का अर्थ समझा देता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम युवाओं को सिर्फ करियर बनाना ना सिखाएं, बल्कि यह भी बताएं कि क्यों ज्ञान और विनम्रता का मेल ही इंसान को वास्तव में सफल बनाता है।

दोस्तों, कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव पर हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में चाहे कितनी भी उपलब्धियां मिल जाएं, इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि सच्ची विद्या वही है जो हमें इंसान बनना सिखाए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए ख्याति गांधी को कार्यक्रम कुछ दिल से यही समाप्त करने की। आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप कुछ देर से कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं सीमा मिश्रा और साथियों के गाए राजस्थानी गीत।

अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत सीमा मिश्रा और साथियों के गाए राजस्थानी गीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत सीमा मिश्रा और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 9 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र का प्रसारण, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: कश्मीर है। अब आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वयं गणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

0: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात से नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उन्होंने आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राज उन्नति की बैठक में 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की पीने के पानी से जुड़ी शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्र हित में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग के साथ

0: समन्वय स्थापित कर जल्द ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित शहरों में डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के काम को पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित अन्य प्रमुख शहरों में ई बसें चलाई जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया गया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एनटीए ने पिछले 24 घंटों में देश भर में अनेक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले में अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती 2021 परीक्षा 20 सितंबर को दोबारा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से 30 मई तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पते को अपडेट कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा में वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पहले दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इस परीक्षा में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल पूछेंगे। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वयं गणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है।
1: आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी के धार्मिक मेले का शुभारंभ आज होगा। ये मेला सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता सीता ने निर्वासन के दौरान वाल्मीकि आश्रम में निवास किया था। ये मेला रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ 7 पवित्र कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड आदि है, जिनमें ज्येष्ठ अमावस्या को स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहां लवकुश का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहां समुदाय अपनी परंपराओं का जश्न मनाता है और उनके पारिवारिक विवाह भी होते हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, 12।
0: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले डेंगू रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना और मच्छरों के नियंत्रण के प्रयास करना है। ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के नियंत्रण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने पर ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: विश्व डेंगू दिवस पर आप सभी से अपील है कि डेंगू से बचाव के लिए सजग रहें, अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर, गमले और टंकियों की नियमित सफाई करें, पूरी बांह के कपड़े पहने और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। याद रखें, डेंगू का इलाज नहीं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आइए मिलकर स्वच्छता अपनाएं और डेंगू मुक्त समाज बनाएं।
0: राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है।

0: पिछले 2-3 दिन से कई हिस्सों में जारी आंधी बारिश से पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। गर्मी के कल से फिर जोर पकड़ने के आसार हैं। इस बीच कल फलौदी और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अन्य स्थानों पर पारा सामान्य के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी अंचल में कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 38 गेंद में 90 रन की पारी खेलने के लिए मिशेल मार्श को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वयं गणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएमएंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के गाए गैर फिल्मी गीत।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत आशा भोसले की गाई गजलें सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत आशा भोसले की गायी गजलें सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, जिसका प्रसारण किया जाएगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का। लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विक्की कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विक्की कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विक्की कौशल को फिल्मों का माहौल घुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव तेज चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा।

विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्वेता उपाध्याय की लिखी गीतों भरी कहानी जीवन एक सरल रेखा। वाचक स्वर आपके इस दोस्त यूनुस खान का है। रेखा गणित के प्रश्न श्यामपट पर किसी खूबसूरत रेखा चित्र से नजर आ रहे थे। दो आड़ी तिरछी रेखाओं के मध्य बना एक कोण और उस कोण में समाये अंक सरला की आंखों को थोड़े धुंधले नजर आ रहे थे। पर अब 15 वर्षों का अनुभव गलती होने की संभावनाओं को खुद ब खुद संभाल लेता है। बच्चों, आज तुम्हारी मैडम अपना चश्मा लगाना भूल गई। ब्लैक बोर्ड पर कुछ गलत लिख दूं तो चुप मत बैठना, आज गलती बताने वाले को इनाम मिलेगा। पूरी कक्षा इस वाक्य को सुनते ही सचेत हो गई। सरला मैडम की गलती निकालना कक्षा 7वीं के लिए बहुत बड़ा काम होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं तक विद्यार्थी गणित का बहुत अभ्यास कर चुके थे। बस यही कारण था कि जब सरला की धुंधली आंखों ने कुछ इधर उधर लिखा तो बच्चे तुरंत बोल पड़े। आज सुबह की आपाधापी में वो नजर का चश्मा लगाना भूल गई। यूं तो आंखें वो सब देख समझ और पढ़ लेती हैं जो जरूरी नहीं, पर किताब के बारीक अक्षर पढ़ते हुए सरला की आंखें झिलमिला उठती थीं। इसलिए आज उसने रेखा गणित चुना। आड़ी तिरछी रेखाओं के बीच बनते कोण उसकी धुंधली आंखें समझ सकती थीं। बच्चों को कुछ कठिन सवाल दे आज वो कक्षा की देहरी पर खड़ी होकर उन आहटों की प्रतीक्षा कर रही थी जिनके साथ दीपावली अवकाश का संदेश आएगा। कुछ ही देर में कोसीलाल हाथी की मस्त चाल में झूमते नजर आए। यूं तो वो स्थूल गाय सदैव प्रसन्न रहता, पर आज उसका चेहरा किसी खुशखबरी से चमक रहा था। मैडम जी, नोटिस पे हस्ताक्षर कर दीजिए। इस वक्त चाय लाने वाले कोसीलाल रजिस्टर था में अति प्रसन्न थे। नोटिस पढ़ते हुए सरला अवकाश के काश में अटक गई। अरे, ये तो बड़ी लंबी छुट्टियां दे दी सरकार ने, ये बच्चे तो सब भूल जाएंगे, फिर वही नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। खैर, मेरी छुट्टियां बच गईं, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं इस बार। कहां जाएंगी मैडम जी? कश्मीर, बहुत सालों से इच्छा थी जाने की, अब पूरी होगी। और त्योहार बिना मनाए जाएंगी का? अरे नहीं भाई, उससे पहले वापसी हो जाएगी। फिर तो ठीक है, त्योहार से ज्यादा का जरूरी है? सब घूमेंगे भागेंगे, हम तक गोड़ का इलाज करवाएंगे, गजब पिरात हैं। सरला मध्य प्रदेश के सिहोरा में गणित की अध्यापिका हैं। पिछले 3 वर्षों से जबलपुर से सिहोरा अप डाउन करती सरला मिश्रा अपने सरकारी वेतन से जितनी प्रसन्न है उतनी वे जीवन की किसी और बात से प्रसन्न नहीं है। यूं तो हर साल ये स्थानांतरण की अर्जी देती रहती हैं, पर इस साल से अर्जी देना इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि सिहोरा के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें आराम रहता है और इनके पति नीलकांत मिश्र घूस देकर कोई काम नहीं करवाते। उनके हिसाब से तो सरला हमेशा से बस से आना जाना करती रही हैं, तो अभी भी कर सकती हैं। जबलपुर सिहोरा यूं भी राष्ट्रीय मार्ग से लगे हुए हैं। नीलकांत मिश्र क्योंकि ग्रामीण बैंक में कार्यरत हैं, तो उनकी पोस्टिंग तो वैसे भी जबलपुर के आसपास के गांव में ही होती है। इस तरह दोनों अलग अलग दिशाओं से सफर करते हुए घर लौटते हैं। आज सितंबर की रवानगी हो चुकी थी और जाड़े की सुगबुगाहट के साथ दशहरे से दीपोत्सव तक की छुट्टियों का सरकारी आदेश आ चुका था। विद्यालय के कॉरिडोर्स में हलचल मची हुई थी। खुशी से कदम बढ़ाता कोसीलाल हर कक्षा में नोटिस पर हस्ताक्षर कराने के लिए तेज चलने का प्रयास कर रहा था। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी अपनी कक्षा

की देहरी पर खड़े अपने साथी शिक्षक शिक्षिका के साथ गपियाने में मशगूल होने लगे थे। प्रसन्नता की इस बयार ने सरला के कानों में कुछ ऐसा फुसफुसाया कि उसका मन अवकाश के बादलों के संग उड़ने लगा। सरला सोचने लगी, इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूँ जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर ली। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर मैडम। आज प्राचार्य भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी, ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधार ताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका, सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना। देखो हम 150 रुपया लेंगे। ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो झूठ

की साबित हो जाएगी। यूं ही सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र, जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था, आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूं। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत

तो 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूँ, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूँ। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूँ मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का, यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूँ। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे, संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर, उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

अगली सुबह सरला देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सारी रात उसके सपनों में पहाड़, नदी और कुहू आते रहे। जब उसका कैनवस पैसों, जेवरों और बर्तनों से सजने लगा तब उसकी नींद टूटी। ओह, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना? फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए। क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकंठ यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकंठ नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकंठ सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला। एक बार

अरभी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकांत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने एक साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुरमुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है। मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकांत अब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकांत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे। वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी। कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकांत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकांत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है। पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकांत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में? नील के जीवन में उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से डरती रही, बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया, और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहते हैं? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया, कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी, और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा यूपीआई पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी, और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार।

अभी आप विविध भारती के मुंबई केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है, एफएम एंड

1.3 MHz पर प्रातः के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर के गाए गैर फिल्मी गीत।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत कैलाश खेर के गाए गैर फिल्मी गीत सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुगम संगीत के अंतर्गत कैलाश खेर के गायक गैर फिल्मी गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम एंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11:31 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं बर्फी फिल्म का गीत। गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। गीत के बोल हैं सैयद कादरी के और संगीत है प्रीतम का।

बिल्ली बार्बर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोहम चक्रवर्ती और आकृति कक्कड़ की आवाजों में। गीत के बोल थे मायापुरी के और संगीत था प्रीतम का। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का अगला गीत, फिल्म बजरंगी भाईजान से। आवाजें हैं जुबिन नौटियाल और प्रीतम की।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
2: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

0: इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।
1: जब हम तुमको देखे हैं रिझेला, जब जब हम तुमको

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

प्रति लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: इतना तो याद है मुझे,
1: इतना तो याद है मुझे,
0: इतना तो याद है मुझे।
2: मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गाना सुनिए, लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

नमस्कार। मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छांव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर, जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो मैं बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं, और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है, हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सबने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसी भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है, और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिया की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है। वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो सकते, कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं, बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही।

एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट। रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही। तो अब कार्यक्रम का ये गाना बताइए, किनके स्वरों में ये गाना है।

जियारी पूनम की हो जाए रातें ज्योति अमावस अंधेरी ज्योति अमावस अंधेरी युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण

0: चलूं उस पर कदम मैं बढ़ाऊं,
1: जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं।
0: फूलों में खारों में पतझर बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं,
1: फूलों में खारों में पतझर बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं।

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीजें और भी जलती थी और कई चीजों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी कांच की बोतल में थोड़ा सा घासलेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीजें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहां धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नजर आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही पोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती, कलियां महकती, फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी?

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैंप की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है। इन्होंने लालटेन की बात कही है और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की। फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे। शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूं तब,

किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है। मगर मेरी किस्मत देख, जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था। आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है, उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है, और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशा अल्लाह कहना।

0: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो अगर सूरज दादा न होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, न पेड़ पौधे होते, न हम होते, न पशु पक्षी होते। शुक्र सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूं और आज के जमाने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही से शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत
3: पल पल दिल के।
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से,

ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रही हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगल विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को

रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है। जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है। हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया। मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहां, ये कैसा दस्तूर यहां। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना।

0: जहां ख्याल जाता है वहां वहां तुम्हें को पाता है।
1: ये कब हुआ ये

बात कर रहे हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी, बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहां रोशनी कहां का गाना है, बड़ा बेदर्द जहां है यहां इंसाफ कहां है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहां।

गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें। गाना मंजिल शब्द पर।

0: शोले फिल्म में जय भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें ये भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।
1: छोटी सी ये दुनिया।

गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको?

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरे लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है।

रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया। याद हो तो बताएं और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था तुम टूर पे जाते हो क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही हैं ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन

यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हीं ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में। बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत लेनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को यही देते हैं विराम। फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को

तैयार हुई। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिवजी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद

ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा के निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार आजकल न सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवनकाल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी।

दोस्तों, भारत को नदियों का देश माना जाता है। भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में

0: एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के

0: लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
4: If you heard me earlier,
3: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
5: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा

0: कृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कार्यजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश

0: राजेश रेड्डी
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव परमन ने।

0: कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। मन चाहे

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

0: नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म डाक के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनांद गांव से नारायण लाल साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म डाक का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।
1: मेरे दिल में आज

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाही गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता।

फासलों की खुशबुओं में महकती नजदीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में।

गीत में छुपा गुनगुनाता हुआ ये राज, किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वरों में आपने सुना एमजी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना और अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कौच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने, तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: बन जाएगी।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग,
3: आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज।
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, मेरे अपराधों को मारने के लिए नहीं।
5: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पुरो वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
5: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
5: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
5: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में न हो तो वहाँ पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
5: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
5: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
5: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है,
4: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
5: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी संविदा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा दो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी न मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
4: लताएं भी रूठती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
2: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांध दी है इस प्रियंवदा ने।
3: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
2: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूँ?
3: तेरे मुंह से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
2: परिहास ना कर।
3: अच्छा नहीं करती, बता।
2: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई, नहीं?
3: तेरी तरह।
2: फिर परिहास।
3: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
2: हाँ बता।
3: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
2: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
3: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
2: अच्छा,
3: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
4: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
2: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
5: अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे, मेरा पीछा छोड़, भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
3: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
4: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
3: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
5: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए। पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
3: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
4: आप क्या

कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये

0: आते ही भाग भी गया।
1: आप खड़े क्यों हैं आर्यन? विराजी ना।
0: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
2: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
1: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य।
0: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
2: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी। बैठे ना आप लोग भी।
1: ना, तुम लोग बैठो, मैं भी। अब बैठ भी जा। इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है? हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
0: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
2: मैं अब क्या बताऊं इन्हें। मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुँचा हूँ।
1: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
2: और ही ढंग से?
0: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
1: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
2: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
0: बहुत मीठा है इसका गला,
1: करती रहती है सबका भला,
0: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
1: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
0: कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है।
2: किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
1: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य। वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
2: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
0: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
2: फिर
0: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहाँ भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
2: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु।
1: किंतु क्या आर्य?
2: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
1: ये तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य। पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
3: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
1: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?

0: इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है। आपके पास ये अंगूठी?
1: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
0: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
2: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
1: मैं आभारी हूँ।
3: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं। सावधान सावधान।
1: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आ रहे हैं।
0: हे भगवान, अब क्या होगा?
3: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्छृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है।
0: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
2: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
1: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
0: चलो चलो शकुंतला।
2: हाँ हाँ चलो
1: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं। किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है, शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है, अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज।
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेष क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी वाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से? और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न

0: कर रहे हैं आर्य।
1: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
2: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
0: आज्ञा महाराज।
2: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
0: जो आज्ञा महाराज।
2: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूँ।
1: आर्य की जय हो।
0: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
2: राजधानी से? वहाँ सब कुशल तो है?
0: वहाँ सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
2: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहाँ भेजो रेवतक।
0: जो आज्ञा महाराज।
2: माता का संदेश।
3: महाराज की जय हो।
2: क्या आदेश है माता का?
3: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
2: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
1: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
2: एक काम हो सकता है माधव्य।
1: मैं यहाँ राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
2: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
1: मैं तुम्हारे स्थान पर?
2: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
1: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
2: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहाँ तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
1: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
2: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
1: कहिए महाराज।
2: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
1: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा।
2: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
1: जो आज्ञा महाराज।
2: जाओ युवराज।

0: आह, कितनी प्यारी पवन चल रही है। अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवता, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं,
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही

0: शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
1: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
0: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
1: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
1: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
1: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
1: हाँ ही, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: ए, मुझे एक उपाय सूझा है।
1: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
1: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
1: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
0: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
1: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
0: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
1: क्या शकुंतला?
0: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
1: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
0: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशन आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार

0: के साथ काम करने का मौका मिला हो,
1: मंचीय प्रस्तुति अन्ना अन्ना अन्ना जी के सिवाय और वसंत देसाई के सिवाय।
0: अच्छा,
1: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, मैंने
0: मंच पर आपने मंच पर दी है।
1: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
0: जी जी
1: उनका
0: जी।
1: उसका नाम था।
0: हाँ, हाँ।
1: तो हम शो करते थे षणमुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रेवलिंग।
0: जी,
1: तो उनका भी अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
0: जी, जी, जी।
1: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
0: हाँ,
1: हाँ। तो एकादी जागा समझो, एक हरकत है कुछ,
0: हाँ।
1: तो आपके घर में नहीं आई।
0: हाँ।
1: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना,
0: हाँ।
1: ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं,
0: हाँ।
1: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
0: अन्ना जी मतलब
1: श्री रामचंद्र जी। तो षणमुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
0: अच्छा।
1: तो थोड़ी देर अन्ना जी ने सहन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
0: अच्छा।
1: एक छोटी गायिका थी मुझे याद है,
0: हाँ,
1: नाम
0: हाँ।
1: नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
0: जी, जी,
1: वो
0: जी।
1: पूरा रिकॉर्ड भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एनवी में।
0: अच्छा।
1: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
0: Okay.
1: एक समय काली पांच सुर है तो,
0: हाँ,
1: खर्च के जो सुर होते हैं,
0: हाँ,
1: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचा ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल।
0: हाँ,
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तू
0: हाँ,
1: घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो किसी के भी सुन दे, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
0: जी जी,
1: दोनों में फर्क था वसंत जी और अन्ना जी।
0: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
1: बहुत,
0: उसमें
1: बहुत।
0: से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ, तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये तो समझ में आता है। कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। देखिए, आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थी, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ। हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से, तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा वो आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा, आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था।
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए।
0: हाँ, हाँ।
1: और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी,
1: पुराना कोई फिल्म का।
0: हाँ।
1: और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी। तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ।
1: तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे। और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की।

0: जी बिल्कुल।
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका।
0: अच्छा।
1: तो एक बार सुलोलना चौहान जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला हम वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है। तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कन्नड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा। तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था, मेरे पीछे बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था, बहुत बड़ा कटआउट बनाया था। तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, तो पत्रे का बनाया था मेटल का। तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनहर यादे, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था। तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है मंदसौर करके। तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे।
0: अच्छा।
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही है,
0: रहा
1: है। ऐसा लगता था। तो ऐसा भास होता था लोगों को। तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ। मेरी मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की। तो बोले नहीं नहीं, वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ।
0: अच्छा।
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा।
0: क्या बात,
1: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने ऐसा गाना गा, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं, एक साल लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हाँ करके सामने सामने ये करते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: फिर दो गाने के बाद एक गाना कोडा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात।
0: अच्छा, अच्छा।
1: और जहाँ तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गांव में छोटे से गांव में भी
0: जी,
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है
1: फर्क? नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: ये है अच्छा लोग, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे। पहला प्रमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: रफी साहब का गाना एक डुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे
0: जी, जी,
1: तो वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको।
0: हाँ,
1: रफी साहब पहले शुरू करते थे
0: जी।

0: भी रहेगा, फिर जानी इसकी, अरे परसो भी रहेगा, अरे तरसो भी। नहीं क्या जॉनी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते।
1: जी जी जी। तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है।
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी।
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना, ये होता है, ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर, इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, मैं उसमें ही खुश थी।
0: जी, जी, जी।
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम देने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा।
0: जी, जी।
1: एक पुणे के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मोरा शो को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है। तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर होता है। क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े

0: नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं।
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मिले, लेकिन अभी हाँ। ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे
0: कंपनी के, होते लिए
1: कंपनी के लिए किसी हाँ, हाँ। कंपनी के लिए बहुत शो हुए।
0: अच्छा,
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल स्टेट मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे लिए। नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
0: जी जी, प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए हैं।
1: हाँ,
0: सबका अपना अलग अंदाज होता है, अपना स्टाइल होता है। ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया। सबका गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
1: सही बात, सही बात।
0: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ?
1: इन
0: कंपोजिशंस में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा,
1: हाँ। अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा,
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा
0: जी,
1: इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ऐसा चिल्लाते थे। जरा भी मैं उसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
0: अच्छा,
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचिरे गाने, तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुख में सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो नंदुरबार करके गांव है छोटा सा दुलिया के पास
0: जी।
1: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था, तो नहीं वो लास्ट में जो ताने वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था, लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए है मुकरी, तो उतना भी उसको मालूम पड़ा। म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
0: तो श्रोताओं में
1: पुराने जो गाने हैं बराबर उनको ए करके चिल्ला देते वहां से।
0: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है, तो
1: उनके दिमाग में
0: वैसा वो सुनना चाहते हैं।
1: अभी एक गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है टर टर टर, वो आना ही चाहिए ये तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना, इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
0: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
1: जी,
0: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
1: मिलता नहीं है, सही बात,
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना
1: बजा करके
0: अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए जिसका से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे, वही और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए
0: जी।
1: तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का।
0: बिल्कुल,
1: तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था सालों साल तक
0: जी।
1: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज चार साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करे, तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
0: अच्छा
1: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन एक काल के हिसाब से तुमसे तो बदली हो जाएगा
0: जी।
1: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का उसमें एक रिहर्सल और शो
0: जी
1: बस, दूसरी रिहर्सल नहीं,
0: ओ
1: हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो
0: बात।
1: तो ठीक है कि उनका

0: में सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे म्यूजिशियंस, संजय मराठे करके है
1: जी।
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी।
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है।
1: अच्छा।
0: तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी।
1: हाँ।
0: लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और शो। लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको शो को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मनके बोलूंगी, विनय मनके,
1: विनय मनके,
0: विनय मनके
1: जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मनके जी की आवाज हम सुनते हैं
0: जी,
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे।
1: हाँ,
0: बहुत सारे जिंगल गाए उसने। और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है वो था, बहुत सारे हल्के बुल्के बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के।
1: अच्छा।
0: तो ये कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा। फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा
1: बहुत अच्छे।
0: फिर एक गाना था अन्ना जी का, बोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, कान में बाली।
1: हाँ।
0: तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों
1: अच्छा,
0: को भी मजा आता।
1: मस्ती के मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा
0: मूड
1: रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, अच्छी थे, लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसका। उसे सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब था, अच्छा गाना।
1: प्रमिला जी, अब गाना सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए, पड़वा के शो, वसंतदा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी, शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी
1: जी,
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी,
1: हाँ।
0: प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा कशा का आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो भारगाव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: आई। फिर मुझे उन्होंने पूछती है कि कसं भाऊ तुम्ही असे प्रोग्राम करता है, एवढे प्रवास करायचा, परत गायला उभं राहायचं कसं करता, म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है, हो जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए।
0: हाँ जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका भी एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: वो मैं शायद

0: विमला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ाला पिकलाया अम्बा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल होना
1: बहुत ही जरूरी था, मस्ट।
0: और भी एक तो पहले हम उसकी झलक सुनेंगे,
1: जरूर,
0: और फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: हो मसला बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, नमुना बघून तुम्ही जाना हो पाहुन, हो पाहुन पाहुन।

0: una, ho paura, paura, paura zara thamba, ho paura zara thamba, arghe padala piklay amba, alavai padala piklay am, ho nitvag padala piklay amba. कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी।
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पाड़ा पिला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे।
1: अच्छा।
0: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से, फिर जोर से एकदम जोर जोर लगा के अम्बा आता था सामने से, मजा आता था उनको भी थोड़ा सा, हमने भी कुछ किया उनको भी शायद।
1: प्रमिला जी आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
0: गाती थी। हाँ।
1: और अपने लिस्ट में
0: कनाडा गाना सुनाती हूँ।
1: जी जी जरूर,
0: मेरी
1: जरूर।
0: लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता
1: कोशिश
0: की
1: क्या, अरे बाप रे गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ,

0: ये गाना बहुत उधर है। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं, शॉर्ट वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नव पिक्चर ना गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ। तो मैंने उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर, इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई, हाँ जी, लिस्ट बनाई होगी, हाँ जी, है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: तब की जो उस शो की जो लिस्ट थी,
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें। अच्छा? जो लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: हमारे लिए नहीं। हाँ? लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर उधर। हाँ, हाँ, लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरे पसंद के या लोगों की पसंद के पहले से थे।
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए। लेकिन एक अवारी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, पाड़ा ला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की।
1: हाँ।
0: वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वो ही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह,
0: बहुत मजा आता।
1: बहुत मजा रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुनकर। प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए तो कौन सा गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये कर्म है कि आज आप यहाँ पर
1: पधारी और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे

0: के चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
0: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से FM बैंड 103.3 MHz पर। ये आकाशवाणी भानसवाड़ा का माही चैनल है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

दी गई वीडियो के अंतर्गत हम आपको जानकारी देंगे। हमारी आज की सभा में शेष रहे और कल की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। तो आइए श्रोताओं, पहले आपको सुनवाते हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही परमात्मा ठीक 5:05 पर कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में गाये चंद राजस्थानी गीत। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम के 5:30 पर। हिंदी प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से शाम के 6:30 पर। राजस्थान प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। शाम के 7 बजे आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। जयपुर के अन्य से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर। समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर। रात्रि के 9 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

केंद्र से फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि के 10 बजे से। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। श्रोता, ये थे हमारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रम। आइए आप एक नजर डालते हैं हमारी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों पर। हमारी पातावरण सभा की शुरुआत होगी रोजाना की तरह सुबह 5:55 पर।

श्रोताओं चिंतन फिलिंग आकाशवाणी की जयपुर केंद्र से 6:05 पर जमुना फिलिंग 6:10 पर। रामचरितमानस फिलिंग 6:30 पर। कार्यक्रम खेती में बात आप सुनेंगे 6:45 पर। आदिवासी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह के 6:50 पर। सुबह के 7:20 पर आप

भारती का एक मकसद ये विविध भारती के मुंबई केंद्र से शाम सुबह के 7:30 पर सुबह के 8 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या कार्यक्रम को दिन से आप सुनेंगे 8:15 पर राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर।

सुबह के 9 बजे से आफ्टरनून की आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुगम संगीत आफ्टरनून के 9:10 पर विविध भारती कार्यक्रम आफ्टरनून के विविध भारती के मुख्य केंद्र से सुबह के 9:30 पर अमेरिका केंद्र से सुगम संगीत आफ्टरनून की सुबह के 11 बजे फिल्म संगीत आफ्टरनून 11:30 पर दोपहर के 12 बजे से आफ्टरनून में विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM बैंड 103.3 MHz पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का मोहनी चैनल है। शाम के 5:05 में ही प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में गाए चंद राजस्थानी गीत। सुनवाते हैं आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा मिश्रा और साथियों के आवाज में गाए चंद राजस्थानी गीत। सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

सिमी मिश्रा और बद्री व्यास की आवाज में गायक से गीत के साथ ही राजस्थान लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। आइए सुनते हैं विविध भारती कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: तराने नए पुराने,
0: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माई लव फिल्म के गाने से। आशा भोसले की आवाज है, आनंद बख्शी की रचना, दान सिंह का संगीत।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आशिकी 2 फिल्म का गाना अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल हैं, जीत गांगुली का संगीत है।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
2: क्यों?
1: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

जीवन मृत्यु फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा, बस थोड़ी ही देर बाद इस कार्यक्रम के बाकी गीत आपको सुनवाएंगे। बीच में आपको सुनवा रहे हैं समाचार। समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्चस्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्र तक पूरी पहुंच थी।

0: शिक्षा मंत्रालय ने देश में 20 में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग लेकर हम फिर हाजिर हैं। सुनिए 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का गाना, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं, राहुल देवबर्मन का संगीत।

विविध भारतीय समय बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता।

आशिक का तेरे क्या होगा अंजाम तो बता। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा

तू सोच ले हम सोचने का मौका भी देंगे, तू प्यार से तंग आएगी प्यार इतना करेंगे। तो सोचने हम सोचने का मौका भी देंगे, तो प्यार से तंग आएगी।

कल के लिए अपना कोई प्रोग्राम तो बता, जो साथ गुजारेंगे ऐसी शाम तो बता। ऊंची सैंडल वाली तेरा नाम तो बता, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनिया।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ

दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: चलता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़े से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अब आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से राजस्थानी और प्रादेशिक समाचार एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मन ही चल रहे शाम के 6:30 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी और फिर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू हुआ। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से जनगणना 2027 के तहत मकानों के सूचीकरण और गणना का काम शुरू हो गया है। आगामी 14 जून तक चलने वाले इस चरण में प्रगणक घर घर जाकर मकानों की निर्माण सामग्री और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में 33 सवाल पूछ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में इस कार्य के लिए 4,163 प्रगणक तैनात किए गए हैं। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने आमजन से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है। उधर पाली जिले में भी 3,000 से अधिक प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए वास्तविक लोकेशन के साथ आंकड़े जुटा रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्र तक पूरी पहुंच थी। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित उनके आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 5 आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। कल गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपितों को पुणे की अदालत में पेश किया गया और पारगमन रिमांड के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने देशभर में 6 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई के इस दौर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही देश की संप्रभुता की एकमात्र गारंटी है। श्री शेखावत आज जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध का माध्यम नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी तकनीकें भी सामरिक हथियार बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश रक्षा उपकरणों

0: आयात पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शेखावत ने वैज्ञानिकों से विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के विश्व दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब का दौरा कर स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न तकनीकी नवाचारों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स के प्रयासों को देखा। मुख्य सचिव ने एआई और आधुनिक तकनीक पर आधारित शिक्षा से जुड़े स्टार्टअप्स को पीएम श्री विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली स्तर पर ही बच्चों को उन्नत तकनीक और नवाचारों को समझने का मौका मिलेगा।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है।
3: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर के मणाई में एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर 51,10,00,000 रूपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही बजट घोषणा के अनुसार स्कूलों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,000 करोड़ रूपये की लागत से विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाया जाएगा। श्री पटेल ने बताया कि करीब 400 विद्यालयों को सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के 1,000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स स्थापित की जाएंगी। जयपुर पुलिस पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नवाचार कर रही है। इनमें एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप शामिल हैं। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप के बारे में बताते हुए जयपुर के पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि ये बहुभाषी ऐप स्मार्ट नेविगेशन और त्वरित सहायता जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
4: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जहां पर टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है। उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी ऐप में रहेगी।

0: एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा। किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प पा सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, उसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
1: जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से जूनियर समर कैंप की शुरुआत हुई। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। 20 जून तक आयोजित होने वाले इस कैंप में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए इस वर्ष 500 से 600 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाए हैं। जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ अनुराधा गोगिया ने बताया कि कैंप के दौरान बच्चों को रंगमंच के साथ साथ कला सहित विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

0: और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हूँ और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
1: और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। चिलचिलाती धूप और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग के अनुसार अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी जिलों में दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य में एक बार फिर से हीट वेव का दौर शुरू होगा। वहीं 18 मई से पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं के द्वारा निकाली गई इस रैली के माध्यम से डेंगू के बचाव और मच्छरों की रोकथाम के उपायों की जानकारी दी गई। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की ओर से मच्छर रोधी गतिविधियां की गई और लोगों को समझाया गया। वहीं करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेमो, पोस्टर, पैम्पलेट और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जनगणना 2027 के तहत राज्य में आज से मकानों के सूचीकरण का काम शुरू। सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां हुई। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 स्कूलों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और प्रदेश के अधिकांश हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। अगले सप्ताह तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर भीलवाड़ा जिले में शिक्षा के अधिकार को धरातल पर उतारने की मुहिम जारी है। राज्य सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के अनुसार आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के मामले में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। ये लक्ष्य 1 अप्रैल से शुरू किए गए प्रवेशोत्सव के दौरान हासिल किया गया है। इसके तहत जिले में चिन्हित किए गए करीब 15,500 बच्चों में से 14,790 बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जा चुका है। अब भीलवाड़ा जिले में लगभग 5.25% पात्र बच्चे ही स्कूली शिक्षा से वंचित हैं, जो प्रदेश में सबसे कम है। जिले के तिलोली गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायी पहल देखने को मिली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 10वीं और 12वीं के 6 मेधावी विद्यार्थियों को शानदार परिणाम देने पर हवाई यात्रा

की सौगात मिली। युवा भामाशाह दशरथ सिंह राठौर ने इन होनहारों को जयपुर से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा पर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और अन्य छात्र छात्राओं को मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हाल ही में भीलवाड़ा प्रवास पर रहे। उन्होंने मांडल विधानसभा

0: विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जलदाय मंत्री ने कहा कि सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रही है। जिन इलाकों में भी पीने के पानी की समस्या है, वहां टैंकरों के जरिए पानी आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीसलपुर बांध में पानी की काफी आवक हुई है, ऐसे में अजमेर, ब्यावर, टोंक और जयपुर जिले में पानी की नियमित आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में पानी की दिक्कत नहीं है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े बीते दिनों भीलवाड़ा आए। उन्होंने जैन समुदाय के संगठन जीतो की ओर से आयोजित सामूहिक नवकार मंत्र जाप कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि आज के दौर में धर्म और संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है, जिससे नई पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। जीतो के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिले की चिट्ठी में अब बात ग्राम रथ अभियान की। हालांकि जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक में ग्राम 2026 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ईंधन बचत की कवायद के कारण इसका आयोजन अभी रोक दिया गया है। ग्राम 2026 व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए ही ग्राम रथ अभियान शुरू किया। इसके तहत सभी जिलों के ग्राम पंचायतों पर ग्राम रथ पहुंच रहे थे। भीलवाड़ा जिले में भी जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में ग्राम रथ अभियान संचालित किया गया। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने भी जिले का दौरा कर ग्राम रथ का जायजा लिया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीफ फसल की बुवाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज और खाद के भंडारण के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रही। उन्होंने सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम रथ अभियान में शिरकत की। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ग्रामीण रथ अभियान के तहत आसींद क्षेत्र में रात्रि चौपाल में शामिल हुए। अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के मौके पर जिले में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। वहीं पुलिस प्रशासन की सतत निगरानी के चलते इस दौरान जिले में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ। जिले में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है, हालांकि मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई और कुछ जगह ओले भी गिरे। हालांकि थोड़ी राहत के बाद उमस और तेज गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौर ने बताया कि गर्मी में पेय पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए। उन्होंने प्रचंड गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं से विशेष सावधानी रखने को कहा है। भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। जनगणना 2027 तहत राज्य में आज मकानों की लिस्ट बनावन रो काम शुरू हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित ने पकड़ियो। हाल ताई 9 जना गिरफ्तार करी चिया। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करिया चावेला। और प्रदेश का घनघर हल्का में जबरदस्त गर्मी। आवता सप्ताह में पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। जनगणना 2027 तहत प्रदेश में आज मकानों की लिस्ट बनावन रो काम शुरू हो। 14 जून तक चलन वाला इन काम में प्रगणक घर घर जार मकान बनावन में काम ले रही जी सामग्री और मौजूद सुविधाओं बारे में 33 सवाल पूछ रहा है। भीलवाड़ा जिला में इन काम सारू 4163 प्रगणक लगाई चिया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू जनताओं प्रगणका ने सही जानकारी देर प्रशासन री मदद करन री अरज किन्नी है। पाली जिला में आई 3072 प्रगणक मोबाइल ऐप रे जरिए वास्तविक लोकेशन सागे जानकारियां भेड़ी कर रहा है। नीट यूजी 2026

0: परीक्षारा पेपर लीक मामला में सीबीआई आज एक और आरोपित महाराष्ट्र रा पुणेरी बोटनीरी शिक्षिका मनीषा गुरुनाथ मंधारे ने गिरफ्तार की नी। वाने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विशेषज्ञ रा तौर नियुक्त की नी है। जांच एजेंसी रे मुजब वारी जूलॉजी और बोटनी रा पेपर ताई पूरी पहुंच है। सीबीआई रे मुजब वा 14 महीने पकड़ी जी आरोपित मनीषा वाघमारे रे मार्फत नीट परीक्षा रा उम्मीदवार ने वाना पुणे रा घर माए खास कोचिंग दी। ई मामला में हाल ताई दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर 9 आरोपिता ने पकड़ी जिया है। काल गिरफ्तार करी जिया 2 आरोपिता ने पुणेरी अदालत सामने पेश करी जिया, जठन वाने अदालत दिल्ली भेज देना। लाला 24 घंटा माए सीबीआई नैरी नैरी ठोड़ाऊ कई आपत्तिजनक कागजात, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि एआई रा दौर माए देश री हिफाजत रा हल्का माए खुद रे पाण उभो हुए देश री संप्रभुता री गारंटी है। वे आज जोधपुर माए रक्षा प्रयोगशाला रा 68वां स्थापना दिवस रे मौके राखी जिया कार्यक्रम माए बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री कहो कि दुनिया रा बदलता हालात माए अब केवल पारंपरिक हथियार ही युद्ध रो जरियो नहीं है, बल्कि पेमेंट गेटवे और सेमीकंडक्टर चिप बनावन सरीखी तकनीक आई लड़ाई रा हथियार बन की है। वह कहो कि देश हिफाजत रा हल्का माए काम आवन वाला साजो सामान दिसावर मंगावन रे बजाय देश माए बनार खुद रा पाण उबो हुवन ओड़ी तेजी बढ़ रियो है।
1: और ऐसी परिस्थिति में जब इस तरह के विश्व दौर में विश्व प्रवेश कर चुका है, ऐसे समय में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आप सबको ईश्वर ने कौशल दिया है, आप सबको ईश्वर ने हुनर दिया है और आप सबको राष्ट्र ने अवसर प्रदान किया है। इस अवसर का उपयोग करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने और देश के इस ट्रांसफॉर्मेशन के वाहक आप सब लोग बनेंगे।
0: राजस्थान विधानसभा बनिया 75 साल वे बन रहे मौके 18 महीने विधानसभा रा नुआ लोगो रो विमोचन और ऐतिहासिक दरोजा रो नामकरण करियो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवना ने बतायो कि लाडला 2.5 साल माए राजस्थान विधानसभा माए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा और जन दर्शन सरीखा कई खास नवाचार करी जिया जाऊं इनरी देश माए खास ओरखान बनी है। इन खास कार्यक्रम माए राज्यपाल हरिभाव बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विपक्षरा नेता टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल समेत कई मान्योड़ा लोग शामिल फैला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर भामाशाह टेक्नोहब रो दौरो कर और स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारियों का न्यू करिया जा रहे तकनीकी नवाचारा ने जानकारी ली। वे रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण सरीखा खास हल्का माए स्टार्टअप्स री कोशिशा देखी और वानी सराहना की। मुख्य सचिव एआई और नवी तकनीक माथे आधारित पढ़ाई लिखाई जुड़िया स्टार्टअप्स ने पीएम श्री स्कूलों जोड़बा मत है जोर तीनों।
2: विजन है कि स्टार्टअप्स का बड़ा फ्लरिशिंग इकोसिस्टम रहे और इसी क्रम में वो आईस्टार्ट के साथ साथ ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर भी स्थापित कर रहे हैं। आज मेरे समक्ष कई नए टेक्नोलॉजीज प्रस्तुत किए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजीज था, मेडिटेक टेक्नोलॉजीज थे, न्यूट्रिशन में, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में, इसी प्रकार से डिफेंस स्टार्टअप्स थे। तो काफी वाइड रेंजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और इसको बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट का कमिटमेंट है अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत और नीदरलैंड दुनिया रा संकटन और समोकरण सारू भरोसेमंद, साफ और आवता बगत सारू तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनावन डबारा माए मिलर काम कर रहा है। वह 5 देशों रा दौरा रा तेत आज नीदरलैंड रा हेग माए भारतीय समुदाय रा लोगा ने संबोधित कर रहा है। श्री मोदी ऊर्जा संकट सरीखी चुनौतियां रो निपटारो बेगो नी भेवन दी सूरत माए दुनिया रा विकास माथा असर पड़बा सागे मोटी आबादी

0: गरीबी की ओर बढ़वा रही शंका जताई। प्रधानमंत्री कहो कि 21वीं सदी में भारत मौका की धरती बनने सामी आयो है, जो तकनीक और इंसानी मूल्यों आधार आगे बढ़ रहा है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रे मुजब व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूलों में नुआ कोर्स शुरू करिया चावेला। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर जिला रा मणाई में एक स्कूल में राखी जा कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। वह कहो कि ई काम में थे 51 करोड़ रूपये बत्ती रकम खर्च करी जावेला। मंत्री बतायो कि बजट में करी जे ऐलान रे मुजब स्कूलों में बुनियादी ढांचा रा विकास सारू 2000 करोड़ रूपया रो विद्यालय आधारभूत संरचना कोष मनायो जावेला। श्री पटेल बतायो कि करीब 400 स्कूलों ने सीएम राइज स्कूलों ना तौर विकसित करी जावेला और 1000 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब्स खोली जावेला। सैलानियरी हिफाजत और सुविधा सारू जयपुर पुलिस एआई आधारित भीड़ सुरक्षा प्रणाली और पिंक गार्ड मोबाइल ऐप सरीखा नवाचार कीना है। पिंक गार्ड मोबाइल ऐप री जानकारी देता थका जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल कहो कि न्यारी न्यारी भाषाओं में काम करने वालों ओ ऐप स्मार्ट नेविगेशन और तुरंत मदद सरीखा सुविधाई मुहैया करावेला। वह बतायो कि ई ऐप रे मार्फत सैलानियों ने सुरक्षित गेला ने जानकारी सत्यापित गाइडा ने लिस्ट और मुश्किल भगत माए मदद मिल सकेला।
2: एक तो जयपुर के हमने 20 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा है, उन टूरिस्ट स्पॉट्स की समस्त जानकारी ऐप में रहेगी। एक SOS बटन होगा जो कि हमारे अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, किसी टूरिस्ट को कभी किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो SOS बटन के जरिए वो हेल्प पा सकता है। इसके अंदर हमने उस टूरिस्ट प्लेस के ऊपर जो भी ऑथराइज गाइड्स हैं उनकी लिस्ट डाली है, उनके फोटोग्राफ डाले हैं, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें एंटर किए हैं, उसमें हमने लोकेशन मैप भी डाला है। उस टूरिस्ट स्पॉट से जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, थाना है, उनकी भी सूची और नंबर।
0: जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में आज जूनियर समर कैंप शुरू हो। पर्यटन कला और संस्कृति विभाग रे शासन सचिव शुचि त्यागी इनरो उद्घाटन कीनो। 20 जून तक चलने वाला इन कैंप में मोटी तादाद में बच्चा नाम मंडाया है। जवाहर कला केंद्र री अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर अनुराधा गोगिया बतायो कि शिविर में बच्चा ने रंग मंच सागे कला समेत न्यारी न्यारी विधावारी व्यावहारिक सिखावण दी जा रही है।

0: एक्टिविटीज सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में रहती हूँ और लास्ट 3 डेज बच्चों के द्वारा परफॉर्मेंस भी किया जाए।
1: अरब मौसम प्रदेश का घनघोर हल्का में जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुजब लाडला 24 घंटा में फलादी 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे सब उन्नी ठोर रहो। महकमा मुजब आवता सप्ताह प्रदेश का घनघोर हल्का में पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़बारा आसार है। इस दौरान उगली रातुनी हल्का में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस ताई पुगलने संभावना है। इस बीच 18 मई आतुनी और उत्तराध हल्का में जोरदार बायरो बजने संभावना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके प्रदेश में ही कई कार्यक्रम रखे गया। झुंझुनू में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर टाबरिया की ओर जागरूकता रैली निकाल और डेंगू बचाव और मच्छरों की रोकथाम के बारे में जानकारी दी रही। जैसलमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारियों की ओर मच्छर मारन सारो जतन करी गया और जनता ने जानकारी दी रही। करौली में जांच करें, सफाई करें और ढकें मुद्दा

सदाचार्य अभियान रा तहत शहरी और गांवी हलका माए डेमो पोस्टर पंपलेट और सोशल मीडिया रे जरिए जाग जगाई जा रही है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। जनगणना 2027 रा तहत राज्य माए आज मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू भयो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला माए सीबीआई आज एक और आरोपी ने पकड़ियो। राज्य माए व्यावसायिक शिक्षा ने बढ़ावो देवन सारू 500 स्कूल माए नुआ कोर्स शुरू करिया जावेला। और प्रदेश रा घनखर हलका माए जबरदस्त गर्मी, आवता सप्ताह पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वा रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से राजस्थान प्रादेशिक समाचार FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का वहां ही चैनल है। इस समय शाम के 7 बजे ही प्रस्तुत है किसानवाणी कार्यक्रम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम हम बड़ा सब किसान भाई बहन सराबित की मन बहन राम राम राम राम। किसान भाई सब भाई बहन बहनों में बैठी थी कि आजकल देखो भाई गर्मी खूब पड़ी रही थी। गर्मी दाड़ा दाड़ा भैया दोपहर में समय एकदम आग जो बरसी रही थी। हम अपनी सावधानी जरूरी है भाई क्योंकि स्वास्थ्य नहीं हार हमार जरूरी है। खेती में काम भी अपन करते वक्त भी अपने ध्यान रख लो जरूरी है। अपने हाजे 4 बजे बाद काम कर हुआ है सुबह 10-11 बजे बाद पहले अपन काम निपटी ना हुआ क्योंकि किसान भाई आजकल गर्मी बहुत पड़ी रही थकी। कहीं खेती में काम है तो ठंडा मौसम में करो तो अच्छे हुए क्योंकि गर्मी में अपन करवा जाऊंगा तो आप लोग शरीर ऊपर कहीं बुरा प्रभाव पड़ा है। किसान भैया पानी भी अपने थोड़ा थोड़ा पी हुए सुबह समय थोड़ा नाश्ता कर लो भूखे पेटे अपन क्षेत्र में कहीं निकल गया कहीं चक्कर आ गया कहीं बेहोश थक गया तो बस वो अपने नुकसान थी सके। एट अपने छोटी मोटी बातें ध्यान राखी ने खेती बाड़ी नु काम करव है। आजकल भी जे भी भाई ने फसल कटाई ने खेतर जी खाली पड़ी ही तो इन खास कर जुताई नु काम अपन करी देवो है। देशी खातर में भी अपने नाकी में जुताई करेंगा तो और अच्छो है भाई। अब्बा वाली फसल ने भी तैयारी हमने थकी अपन करी देवी है। जे भी भाई खरीफ में फसल में बुआई सोयाबीन है मक्का है बीज वगैरह भी अपने में पहले था कि अपने लागू नहीं सड़ेगा खाद बीज तो अच्छे रहेगा तब अपने दूर धूप नहीं करनी पड़े वधारे वधारे क्योंकि अपने पानी आ भी जाएगा थोड़े दड़ा में तो बस जल्दी जल्दी दो धूप में अपन कहीं पसारी पड़ गया या कोई भूल सुख थी तो अपने खेती में पसा लेट पड़ी सके एट आमने थकी अपने खाद बीज की सुविधा करी राखी है। खेतर में असली साफ सफाई कूड़ो कचरो कहीं हो तो इकट्ठो कर जला देव क्योंकि किसान भाई कूड़ा कचरा थकी अपने घो नुकसान है क्योंकि आमने थकी दीमक है कहीं उदाई है कीड़ा मकोड़ा पासा आना पंप आना काबा थकी एट सफाई जरूरी है। कच्चो गोबर अपने नाखो किसान भाई मेन काम।

0: जे भी देशी खातर भाई नाखी रहा थका आजकल तो कच्चा गोबर थकी वधारे नुकसान है असली एक साल डेढ़ साल तक इन्हें असली पाकू हड़वा देंगे अपन नाखंगा तो इन्हें थकी उदय वगैरह नहीं लागे कच्चा गोबर थकी वैसे उदय वगैरह लगी जाए इसलिए यानी छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी जरूरी है किसान भाई बातें साली रही पुनः आज पासा हम खेती हाथे ते मर्सी वगैरह में उत्पादन भी भाई करी जा सका है तो आज पासा लाला भाई की बात है तो यहाँ मैं पसा अपनी बड़ी बातें कर रहा हूँ
1: किसान भाई आज अपने वैसे सलमा सब्जी करो जी मर्सी तेल में बारह मास बात करूंगा तो राम राम साहब
2: राम राम साहब राम राम
1: अपना नाम
2: लाला पाजकार जी हमें बंडिया जमीन है और छाणी नैयाबादी में जमीन है
1: अच्छा अच्छा
2: हमें तो बंडिया रहता तो आई तक ही पैसा हूँ नवरात्र में
1: आपने बड़े हजी तो खास को वडलिया में रहो
2: वडलिया में रहता था
1: साहब आप पंचायत तुम्हारे कहीं लगे
2: हमारे टूरा लगे यानी जमीन में जलाना लगे
1: अच्छा अच्छा खरी बात साहब आप तो एकदम भला भला व्यक्ति दिखाई रहे थका साहब
2: अरे जाओ अरे तो खरा
1: अरे अरे साहब बनाई करी क्या आप
2: बनाई के मैं करी मैं हमारे बीजे पान के पान आई हाँ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁਕੜਾ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਡੰਡ ਸਾਰਿਆ ਨੇ
1: ਅੱਛਾ
2: ਰੱਜੋ
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ
2: ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐ ਨੇ ਸਾਖਰ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮ ਲਖੋ
1: ਹਾਂ
2: ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਵਾਸੋ ਨਿਕ ਲੋ ਕਰੋ
1: ਇਸ ਕੋਲ ਗਿਆਸ ਨਾ ਦੇ
2: ਨਾ ਗਿਆਸ ਨੇ
1: ਅੱਛਾ
2: ਹਾਂ
1: ਤੋ ਵੀ ਆਪ ਅੱਛਾ ਜਾਗਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਰਹਾ
2: ਹਾਂ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੁਤਾਰੀ ਖੋਕ ਕਰੀ
1: ਅੱਛਾ
2: ਹਾਂ
1: ਸੁਤਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂ
2: ਸੁਤਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਯਾ ਉਹ थोड़ी ताकत कम पड़ी तारी विशाल कजा के महाराज साणी में जमी है
1: अच्छा
2: रोड में ते
1: हाँ
2: हाँ ताज आई ने बस सब्जी कमो
1: तो सब आप सुतारी में काम करो हैं सब आप खाटला वगैरह
2: सब आइटम बनाई है गढ़ाई में काम पूरे है
1: दरवाजा मकान ना
2: मकान में दरवाजा जाली सब
1: अच्छा
2: फटाके हटाके सब काम करिए
1: तो हम तो इनमें अच्छो धंधो नी
2: धंधा तो बढ़िया है बढ़िया है थोड़ी ताकत जुगे
1: ताकत जुगे
2: खोपड़ी जुगे
1: खरी बात है भाई तो ताकत में मेहनत तो करवी हर कोई धंधा में करवी चितारी धंधो तो हम तो अच्छो धंधो है बढ़िया बैठा बैठा अपना इनकम पैसा दो पैसा कमाई सके
2: कमाई सकते है मशीन है बे मारे
1: अच्छा
2: हाँ बे मशीन
1: तो मशीन है हमने सलाई रहो
2: साली है सोरा साल में
1: सोरा साल में
2: हाँ सोरा साल में मैं तो सोड़ दी
1: अच्छा तो साहब जी दरवाजा ने आज तुम्हें जाली वगैरह बनावो तो आम हर तो फीट ऊपर है ना खेती के अंदर
2: हमें नंग माते पैसा लग दो
1: नंग मात तो कितने पैसा लग जाए
2: हमें तो लड़ाई करी है ये ऑर्डर नहीं करियो
1: अच्छा
2: तो लड़ाई में 500 रुपया लेता
1: लड़ाई में 500
2: पहले दाम में 50 रुपये में सॉफ्ट बड़ी है
1: अच्छा
2: हाँ पहले ठगी है
1: अच्छा
2: हाँ
1: तरी साल ठगी आप सुतारी काम करो
2: हाँ तरी साल में ना आगाड़ी आते काम करता था
1: तो पहले कितनी रेट साल थी गड़वानी कोई
2: गड़वानी जो है हाट रुपया खाटला ना पसा रुपया हाट रुपया पसा रुपया सॉफ्टा ना हाट रुपया और नी गड़ाई थी
1: अच्छा
2: हाँ
1: तो आज तो हमारे पास युग बदला जो है
2: युग बदला जो आज 500 रुपया आला तो और नहीं गड़े
1: अच्छा अच्छा
2: उतार
1: मेहनत होती की
2: मेहनत होती की
1: पैसा होती जो
2: पैसा होती मैं जाड़ी ना है 1000 लागी 800 लागी ना 500 लागी 400-500 रुपया सॉफ्टा ना ले जाए
1: तो पास और बनाई देता है
2: और बनाई देता और बनाई देता सब कुछ काम करे ग्यारह में सॉफ्टी उतारी ग्यारह को
1: अच्छा तो आप तो भाई मेहनत ही आदमी
2: मेहनत तो काफी करी
1: और भी करी साहब हमें तो सब रज्जा भोड़ा ने माता भी जो
2: धोड़ा
1: थोड़ा अरे हमें तो गणा बढ़िया गणिया बना सरकार तो पास नौकरी है सब अमन घनी मेहनत पड़ी कर
2: थोड़ी काटी आई गई नौकरी नौकरी असली बनवाओ तो निकला है नहीं तो नहीं निकला है वो
1: सही बात है
2: मेहनत करो ते नौकरी का मल है
1: हाँ
2: भगवान दे
1: सही बात है
2: गरीब माल

0: है जी।
1: अरे
0: अपन में नौकरी के मालिक आ लेगा,
1: मालिक
0: विश्वास रखो,
1: खरी बात है।
0: मेहनत तो करनी पड़े,
1: मेहनत तो हर चीज में करनी है
0: भाई।
1: सही है। तो साहब गुरु मालिक में नाम ले रहा, आप भक्ति करो है।
0: हाँ भक्ति हमारे
1: भक्ति में नाम ले रहा, तो आप गुरु गोविंद ना भगत हो।
0: गरीब गोविंद ना भगत।
1: अच्छा हाँ, तो आप गढ़ क्षेत्र अपने पूरा में गुरु गोविंद के भक्ति नो मार्ग
0: हाँ
1: जागरूक कहानी जनता ने करी की बताओगे।
0: अरे मालिक अफार माया है, अपने ने एटलो काको पत्तो नहीं लागे, गम मजा गायम के नहीं करता करता वहां साणी मंगली आ गया, वहा जी रेड़ी आई।
1: अच्छा
0: हाँ, नानी जनता ने जगी कल जी भी मैं भक्ति नो बीज इने रखी तो।
1: अच्छा
0: हाँ गुरु मालिक आई
1: बहुत दानी जनता ने शिक्षा बारा ने आगाड़ी गुरु गोविंद ने जागृत करी,
0: जागृत करी आज आज पंक्ति पक्ति आली इजवाल थी है।
1: खरी बात है भाई, लीला लहर है,
0: लहर है, कार्यशाली नहीं थकी है।
1: सही है।
0: गुरु मालिक तो मोटरसाइकिल माता आज नीजान अपने भगत भी नीजा है,
1: बनवो जरूरी है,
0: बनवो जरूरी है,
1: बनाई में भाई तो महत्व है भाई घणो है।
0: हगो वालो कहते हैं खाओ पी को काजू बदाम कहते हैं सब इन्हें मगोण है।
1: अच्छा अच्छा,
0: इन्हें देखी सब आवे धन आवी गई सब बेटा।
1: तो गुरु गोविंद ना भगत साहब तो आते साहब तो आपन आमन मड़िया
0: वे
1: आमन बे बात बताड़ी, इन्हें लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम
0: राम राम राम राम।
2: बदलो बदलो आदत बदलो,
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना,
5: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित,
6: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
4: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
6: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
4: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
6: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
4: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका घर।
7: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनित में जारी।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: वो किसान बहुत को लाला भाई ने बात हम बाद विज्ञापन भी है ने अगर बात करें किसान भाई देखो कृषि उत्पादन बढ़ावा हारू प्रमुख सूत्र साधन जी इन्हें बारे में बात करें किसान भाई देखो कृषि उत्पादन बढ़ावा हारू अपने खास करीने अच्छा वालों प्रमाणित बीज अपने काम में लेव रोग रहित जी रोग नहीं वधार आवे ने अधिक उत्पादन अलवा वाली फसल नी बुवाई अपन करवी उपचारित भी करवो है ने किसान भाई देखो आने वैज्ञानिक मिट्टी प्रबंधन जी मिट्टी में जांच करवी है ने तत्व की कमी अनुसार अपन खातर अलवो है देसी खातर है गोबर खातर है पशु मलमूत्र है इन तत्व अनुसार अपने मिट्टी में नाखवो है जैविक खाद नो उपयोग करवो किसान भाइयों अच्छी फसल उत्पादन लेवा हारू अपने देसी

खाद नो उपयोग पशु मल मूत्र गोबर आकेशवा खाद वर्मी कंपोस्ट खास उत्पादन अच्छो मिली सके। हरी खाद नो भी उपयोग अपनी अच्छी फसल उत्पादन लेवाहरू करी सका। किसान रो देखो आधुनिक एवं कुशल सिंचाई इतने ड्रिप और फुवारा सिंचाई नो उपयोग भी अपन करी सका। इन थकी पानी की बचत ने पौधा ने जड़ तक पानी आ पहुंची सके आने थकी घना फायदा है। ने किसान भाइयों इन हाथ हाथ अपन फसल चक्र अपनावी ने खेती में अच्छी आवदानी भी लाई सका। आना साल अपने मक्की करी तो पहला साल फिर कपास करो या बीजी फसल करी तो इन थकी भी अपन फसल चक्र अपनावा थकी भी अपना ने अच्छो उत्पादन बने भाई मिट्टी में उर्वरा शक्ति भी बनी थकी रहे ने उत्पादन भी अच्छो मिली सके। अपने समय थकी कीट ना खरपतवार नियंत्रण कर वो जरूरी है क्योंकि समय में ध्यान रखूंगा तो सारा अपन अच्छी इनकम ले सकता। रासायनिक खाद में भी उपयोग कम करवो है क्योंकि रासायनिक खाद थकी अपने घणो नुकसान थाय मिट्टी उर्वरा शक्ति कम थाती जाए इतले देशी खाद में उपयोग वधार करवो है। देखो नीम कीटनाशक है नो भी अपने नीम तेल है नीमोली गोल है जैविक उपाय अपन करेंगा तो अच्छा रहेगा। किसान भाई जैविक उपाय थकी घना फायदा है आने थकी हूँ के अपने अनाज पोषक तत्व है भी बनी थकी रहे इतले अपने जैविक में उपयोग वारा करवो है। किसान भाई बातें साली रही हजू भी बातें करूंगा पूर्ण पास संजय वेड़ा है ने एक बढ़िया सुबह हूँ पसरा गाड़ी बातें करा।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, MEWSONAIR न्यूज़ ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो।

0: जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: वाह भाई, देखो असल में एक बढ़िया सुगीत भी है। किसान भाई अपने वास्ते सैलरी थी, खेती बाड़ी थी। आजकल गर्मी में मौसम सैलरी और गर्मी भी बहुत तेज पड़ी रही थी। किसान भाई देखो, अब पशु धन खास अपना हाड़म बढ़ाना समय में राखो जरूरी है। पशु भाई अबुल जीव है, नहीं बोली सके नहीं हम भी सके। किसान भाई अपने पशु ने छाया में अपने बांधव जरूरी है। हवादार स्थान छाया में बांधेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। आजकल पशु ने पानी भी अपने ने साफ पानी स्वच्छ पानी पूंगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भाई हूं करे कि भाई पशु ने सूटो छोड़ दिया तो पूरा दाड़ो आपने तुम फरते पड़े निकलने अपने नदी तालाब में या नदी में गंदे पानी पी ले गया तो इन्हें थकी हुआ कि पशु बीमार थी सके। एट अपने घीरे साफ पानी पंगा तो अच्छा रहेगा। पशु ने खास कर आजकल कई प्रकार नहीं खान पान में भी अपने ध्यान रखो जरूरी है। पशु ने अच्छे पौष्टिक आहार आलंगा तो उस पशु अच्छे पाचन क्रिया में दूध में मात्रा भी अच्छी बनी थकी रहेगा। पशु ने मक्का वाटो गेहूं वाटो है कपास निकली है जौ वाटो है वगैरह अपने अच्छी पौष्टिक आलंगा तो बच्चू अच्छू इन पाचन क्रिया भी अच्छी थी। दूध भी अच्छा आलेगा, फैट भी वगैरह अच्छी आलेगा। इसलिए किसान भाई उन्हें खान पान में भी अपने ध्यान रखो जरूरी है। आना समय हरा सारो में अपने विशेष भाई थोड़ा बहुत हरा सारो है तो पशु ने आलंगा तो अच्छा रहेगा। खास कर भूसी वगैरह भी अपन पशु ने आला तो इन्हें थोड़ा बहुत नमक नाकिद में पशु ने खवा देंगे तो अच्छा रहेगा। इन्हें थकी हुआ के पशु भी पानी भी अच्छा पी सके, इन्हें थकी अच्छा रहेगा। इसलिए किसान भाई पशु ने खास कर ध्यान रखो जरूरी है। कई गाभिन पशु गाय भैंस है तो इन्हें भी अपने ध्यान रखो जरूरी है। समतल जमीन पर ये गाभिन पशु है इन्हें बांधव जरूरी है भाई, क्योंकि उबड़ खाबड़ जमीन पर अपन गाय भैंस है इन्हें बांधेगा तो जो गाभिन है पशु इन्हें तकलीफ थी सके। इसलिए आने बात में खूब ध्यान रखो जी गाभिन पशु है इन्हें अपने जो भी पशु अपने कोड में है इन्हें थकी अलग बांधव है ताकि अच्छो पशु स्वतंत्र रह सके। क्योंकि कई पशु ने अपने पाए बांध देंगे तो एक बीजा पशु ने आपस में कई एक आधा ने भाई मूंड वगैरह वाई पड़ी तो नुकसान थी सके। एट अपने समतल जमीन पर सही थोड़ा स्वतंत्र अलग बांधेगा तो अच्छा रहेगा। किसान भाई देखो आने कोड में भी अपने नियमित साफ सफाई करवी है, क्योंकि कई पशु ने आसपास काबो है कई कूड़ो कसरो है तो इन्हें सफाई जरूरी है भाई। क्योंकि आजकल सफाई तो की अच्छा रहेगा, इन्हें हवा अच्छी मिलेगा, पंखो है कोई हवा उपयोग भी अपने करूंगा तो अच्छा है। पशु में कॉर्ड वगैरह भी नहीं है तो भी कोई टाटड़ो वगैरह या मेन्यू है तो इन उपयोग कर पशु ने अपने छाया में बांधव जरूरी है। किसान भाई बातें करवा तो घनी इच्छा है पर सौरा नो टाइम पास पूरा था तो यू है। इतना आज तो अपने सूटा पड़े ने काले नवी जानकारी ले सौरा पर फिर मिलूंगा। आज नंदू भाई ने अल्लाह आज्ञा आवजो। राम राम राम राम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया गया FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7:30 होने आइए सुनते आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खेतीबाड़ी से हमारा सब काश्तकार भाई लोगों ने महेश भाई को राम राम और नरपत भाई राम राम, आपने भी
1: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम और साथ ही महेश भाई आपने भी राम राम।
0: देखो नरपत भाई किसान भाई जो कहीं बार गर्मी को समय है और खेत खलिहान में कोई फसल संबंधी कोई विशेष काम तो आज को नहीं, तो वह भी थोड़ा सो आराम कर रहे हैं और गर्मी का माया पर देखा हाँ कि जगह जल स्रोत ही बिल्कुल सूख जाए ही और जकी खेती है वह पानी पर निर्भर है और जो भूमिगत जल है वो समय के साथ साथ में बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे और बिना पानी के देखो कोई भी फसल अपा हुआ कौन सका खेती की तो कल्पना कर कौन सका। तो कम से कम पानी कमाए अच्छा फसल उत्पादन और कम से कम जो है भी कमाए खरपतवार और रोग हुए इस प्रकार की आपा सिंचाई पद्धति अपनावा तो जो है अपनी फसल भी कम लाग जो कि कम मेहनत में और कम पानी कमाए हो जाए। तो इस प्रकार की जो सिंचाई है वह है ड्रिप सिंचाई।
1: बिल्कुल सही बताया, ड्रिप सिंचाई की बार आवश्यकता भी चापन है क्योंकि पानी की जो कमी आ रही है क्योंकि आज भारत में जल संकट बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। खेती में पहले सबसे अधिक ज्यादा आपने पानी की आवश्यकता पड़ी थी लेकिन आपने जो पारंपरिक सिंचाई जी पहली जी आप नहर द्वारा बाढ़ से फुहारा से जो पानी की काफी बर्बादी हो जी तो पानी को बड़ो भाग जो वाष्पीकरण है सागर भाव से वो नष्ट हो जाओ जो एक कारण आपने सबसे ज्यादा किसान भाई ने ड्रिप सिंचाई योजना अपनानी चाहिए।
0: बिल्कुल देखो नाली बना के भी पानी का बहाव विदेशियों या जो कि फवारे विदेशियों के कि देखो पूरा खेत ये भी कमाए देखो पानी की छिड़काव हो जाए और फसल के साथ साथ में फिर जगह ज्यादा नमी आना से क्या हुआ कि जगह आप फसल का जगह पौधा उगाए नहीं तो बाना भी फिर क्या कि वह खरपतवार पनपने लग जाए। जबकि जो ड्रिप सिंचाई है बूंद बूंद सिंचाई भी कमाए क्या है कि जो पौधो है केवल बिना ही आवश्यकता के अनुसार पानी लागे तो भी का आसपास में जब पौधा के पास में नमी न रहे तो खरपतवार की समस्या भी कोनी होवे और पानी धीरे धीरे एक सीमित मात्रा में लागतो रहे तो पौधे की बढ़वार भी चौकी होवे और रोग नियंत्रण भी जो है आसानी से हो जाए। और इसके साथ में क्या है कि देखो आप बात करें कि जो दूसरी जगह सिंचाई प्रणाली भी कमाए पानी की थोड़ी सी बर्बादी ज्यादा हुआ है और पानी को जो वाष्पीकरण है वो भी ज्यादा हुआ है। बूंद बूंद सिंचाई को ये फायदा है कि भी 60-70% कम से कम पानी की बचत हो जाए ई कमाए और आप कई प्रकार की जो की फसल ही वह ई कमाए कर सका हाँ। और साथ में अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा ले वहां तो जगह आप सब्जी बागवानी कई प्रकार की फसल ले सका। और नरपत भाई आपने जो को प्रदेश है जो को एक सूखो प्रदेश है पानी की समस्या है तो जगह कम ई प्रकार का क्षेत्र जिठे सिंचाई का साधन उपलब्ध गोनी तो बठे भी बागवानी को विकास हो सके।
1: बिल्कुल आपने ड्रिप सिंचाई को जो महत्व थे बताया तो ये मैं कहा पानी की सबसे ज्यादा महत्व आप 40-70% पानी बचा सका चाहिए क्योंकि जो सामान्य की तुलना में ये हो फसल उत्पादन में भी वृद्धि हो जो आप ड्रिप सिंचाई जो पौधा में नियमित पानी दे रहे

0: रखना, तो बूंद संतुलित मात्रा में पानी जो आवश्यकता से बतल ले लो और इससे पौधा की आपने अच्छी वृद्धि होली और आपने जो उत्पादन है ना जो भी बढ़ जाओ लो। मिट्टी में लगातार उचित नमी बनी रह ली और आपने जो पौधा को तनाव कम हो लो और इनमें उर्वरक की भी बचत हो जाए। ड्रिप सिंचाई आप कर रहा था तो पानी में जो घुलनशील उर्वरक उर्वरक चाहिए वो सीधा पौधा की जड़ा तक पहुंचा ला और ये प्रक्रिया ना आप फर्टिगेशन भी कहो चाहें और उर्वरक का जो सही उपयोग कर ला तो इनमें अपना जो पानी की जब बर्बादी कम होली और आपने जो खाद बीज की बचत से खेती की जो लागत है घटेली और किसानों ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।
1: ड्रिप सिंचाई का मायने के है कि जो आप पानी दे रहे हैं तो एक स्वचालित रूप से बिना कर दे जिसे आपने जो का आप फौरा चला के जिस प्रकार से पानी देता या फिर नहर नाली बना के फसल में पानी देता तो बीच में आपने जो समय की बचत हो है और आप दूसरों काम कर सका हाँ। और एक एक जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली है यह बहुत ही अनुकूल है अपने किसान माये के लिए क्योंकि कृषि परिवेश में आप देखा तो उद्यान अंगूर का बाग ग्रीन हाउस और जबकि पंक्तिबद्ध फसल ही माना आप शामिल कर सका और जबकि थोड़ी सी उबड़ खाबड़ जगह है बठे भी आप ड्रिप लगा सका।
0: बिल्कुल आपने बिजली और ऊर्जा की भी बचत हो सीन लगावा से।
1: हाँ
0: ड्रिप सिंचाई में आपने जो पानी जो भी कम आवश्यकता रही तो आप मोटर जो आपने जो पंप जो कम समय के लिए चलाओना तो आपने ऊर्जा या बिजली का बिल भी कम आओ और इनमें आपने डीजल की बचत कम होली और ऊर्जा की बचत से आपने खेती में जो लागवाड़ा पीसा चवा लागत आपने घट जा ली। तो आज का समय जो बढ़ती जा रही बिजली की दर बढ़ रही चाहिए यूनिट का रेटा बढ़ रही चाहिए आपने ईंधन कीमतान देखता है आपने जो तकनीकी जो ना ड्रिप सिंचाई योजना अपने किसान भाई ज्यादा से ज्यादा अपनानी चाहिए।
1: पौधा के स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार हुआ है ड्रिप सिंचाई से क्योंकि ड्रिप सिंचाई प्रणाली है जो कि जड़ तक सीधे पानी पहुंचाकर पत्तिया के ऊपर जो पानी जम जाए है बिना रोके है और इश्यू क्या हुआ है कि फफूंद और कई प्रकार का रोग पौधा का मैं कोने लगे। यह विधि जो कि फफूंद संक्रमण और अन्य पौधा की जो रोग की संभावना है बिना कम करे इश्यू क्या है कि पौधा स्वस्थ और ज्यादा मजबूत होए। इनके अलावा जो कि उच्च पैदावार और पौधा ने पानी की कमी से मुझे को बचाने के लिए नमी को निरंतर स्तर है वो भी महत्वपूर्ण है।
0: अपन श्रम की आवश्यकता भी कम पड़ी जिससे श्रम कम लागत अपन जो पारंपरिक सिंचाई जी मापा खेत में पानी पहुंचाओ चाह बांध नियंत्रण कर बागले ज्यादा से ज्यादा अपन मजदूर की आवश्यकता जो फुहारा उन्हें से उन्हें चेंज कर रहा चाह या रात में जो भी आप पानी कर रहा चाह तभी में आदमी ने खुद नहीं मजदूर की जरूरत पड़ी थी।
1: नाली बनानी पड़े
0: बिल्कुल लेकिन आप ड्रिप सिंचाई प्रणाली से स्वचालित रूप से कार्य कर रहे जिम्मे मापन श्रम की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता कौन पड़ेगी और यहाँ अपने समय की बचत होली और जो किसान से जो अन्य कृषि कार्य पर भी ध्यान दे सके थे क्योंकि सिंचाई के ऊपर निर्भर रहो क्योंकि मैंने ड्रिप सिस्टम लगा दिया तो आप भी ड्रिप सिस्टम के द्वारा जो आपने खेती हो भी के अलावा अपना दूसरों काम भी आप कर सकते हैं इसलिए अपने श्रम की भी बचत हो जाएगी।
1: बिल्कुल उबड़ खाबड़ और लवणीय भूमि का मैं भी जो है ड्रिप सिंचाई में आप अपना इसका
0: एक जलवायु परिवर्तन को भी मुकाबला कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि जलवायु परिवर्तन कारण जो वर्षा अनिश्चित हो रही है कड़े सूखी कहीं बाढ़ की स्थिति जो बने ड्रिप सिंचाई कम पानी में भी खेती आपने सफल हो जाएगी और तकनीक ने जो आगे भविष्य में अपना जो टिकाऊ कृषि चाहिए के रूप में आप ड्रिप सिंचाई योजना आगे अपना सका था।
1: और फसला का मैं सबसे ज्यादा जो समस्या रह है किसान भाई ने बाहर रह खरपतवार की क्योंकि किसान फसल उगावा है खरपतवार तो खेत कमाए अपने आप ही फसल के साथ साथ उग जाए फिर खरपतवार को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो गया बिना निकालो और रसायन गिरा तो फसल को नुकसान हुआ। तो क्योंकि पानी जो बूंद बूंद सिंचाई में केवल पौधे की जड़ में लाग रहे तो आसपास में नमी को नहीं होवे तो खरपतवार भी को नहीं आवे और पानी पूर्ण नियंत्रित रहे जिसमें कटाव की भी समस्या को नहीं आवे जल के द्वारा जो एक मिट्टी को कटाव हुए वह समस्या भी ड्रिप सिंचाई के में को नहीं आवे किसान भाई ने। तो नरपत भाई देखो ड्रिप सिंचाई के महत्व की तो आप बात कर लिया किसान भाई के लिए।
0: बिल्कुल
1: तो एक चौको सो लोकगीत तो सुनाओ किसान भाई ने।
0: बिल्कुल सुनो सा

0: तो नरपत भाई
1: हजुर
0: देखो खेजर लीरो सांगरियो साबरमल सबल की आवाज में कतरो चौको लोगी तो किवी देखो सांगरी की सब्जी एक बार कतरी गुणकारी है
1: लेकिन धीरे धीरे पानी कमी से और ये अपने खिचड़ी कम हो से पेड़ पौधा तो सांगरी की कमी भी आएगी जैसा
0: बिल्कुल पहले देखो सांगरी अतरी होती कि रुड़ती फिरती और अब देखो सांगरी अतरी महंगी भी होगी और अपने देखभाल में भी कम मिले तो जब कोई चीज कम हो जाए यदि भी की कदर थोड़ी ज्यादा हुआ है ना और देखो बात यह की है दिन में गर्मी अतरी जोर की पड़ रही है तावड़ो अतरो तेज पड़ रहे है कि अपन काम से त्या बारह तो निकलने पड़े और ये कि लू लपट कमाए बारह निकला तो कई बार व्यक्ति में लू लाग जाए और लू लाग जाए तो फिर कि व्यक्ति बेहोश भी हो जाए बिना बुखार भी चढ़ जाए तो कहीं ध्यान रखना चाहिए कहीं लक्षण हो का
1: बात देखो तापमान बढ़ रहे जो तो यह लू तो लागवा की आम समस्या होगी क्योंकि जो सुबह शाम आप देखा था जब अगर सुबह शाम निकला तो नहीं अगर दोपहर में निकलेगा तो आप लू की चपेट में आ भी सका था क्योंकि बार इस टाइम में गर्मी का कारण जो की शुष्क हवा चाले जब आप लू के हुआ था अगर आप कोई भी व्यक्ति दिन में तेज धूप में बारह ज्यादातर रह गो तो बिको तापमान के कारण से भी शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सके थे जो लंबे समय धूप में रेबा से अत्यधिक गर्म वातावरण रेबा से भी लू लाग जा लो तापघात भी हो सके थे शरीर में पानी की कमी हो जा ली पर्याप्त आराम न करवा से भी लू लाग जाए थे और गर्मी में भारी कोई आप व्यायाम कर दो ना एक्सरसाइज जिम में बंदे भी अगर कोई भी आदमी जो कम से कम तरीका से मतलब गर्मी का मौसम तो ध्यान रखकर काम करना चाहिए और पौष्टिक आहार या ज्यादा ज्यादा जो तरल पदार्थ है बिन ज्यादा ज्यादा अपन सेवन करे जिससे कि अपने शरीर में को पानी की कमी नहीं रहे
0: तेज बुखार आ जाए शरीर को तापमान तेजी से बढ़े सिर दर्द हो जाए और लगातार सिर में दर्द रहे चक्कर आवाने लग जाए जब लू लग जाए तो संतुलन भी बिगड़ जाए शरीर को और कमजोरी आ जाए जिसमें शरीर में थकान और ऊर्जा की कमी महसूस हो गए पसीनों कम आवे और त्वचा है जबकि वह बिल्कुल सूखी हो जाए और कई बार व्यक्ति बेहोश भी हो जाए तो बेहोश हो जाए तो फिर बिना देखो ठंडी छाए कमाए ले जाके बिन बैठाना चाहिए और जब होश आ जाए तो थोड़ा सा बिना ठंडा पानी पिला
1: बिल्कुल से बताया कि लू और तापघात लाग जाए तो बिना अपने बचाव के लिए कहीं करना चाहिए कि अधिक से अधिक पानी पिलाना चाहिए बिना गर्मी का दिन हम शरीर में पसीना करो में जो पानी अपने जो लगातार निकले जाए तो दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए प्यास नहीं लागे तो भी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी तो पीना ही चाहिए जिनमें शरीर में पानी की कमी नहीं हो और जो तरल पदार्थ को जो सेवन करा बारिटे में अपन नींबू पानी छाछ नारियल पानी आम पन्ना लस्सी आप फला जो भी रस है जूस है और ग्लूकोज को घोल क्योंकि गर्मी में बचाव के लिए ही अपन ये तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए और जो मसालेदार जो खाना चाहिए बिना कम से कम यूज में लेना चाहिए
0: बिल्कुल शरबत है जका तरबूज खरबूज इस प्रकार का जका रसदार फल ही जका इन मौसम का फल ही बागो सेवन करा और आप जी बताया कि भी ज्यादा मसालेदार जो भोजन है या ज्यादा तेल को जो खाना है बिल्कुल अपने सेवन बिल्कुल सीमित मात्रा में करना चाहिए
1: और एक दोपहर का समय अपन जरूरी काम है तभी आप बाहर निकला
0: हाँ
1: ज्यादातर तो दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के बीच में तो 12 बजे से बचना चाहिए अगर आपने जरूरी काम नहीं हो तो
0: बिल्कुल
1: इस टाइम में सबसे ज्यादा अपना तापमान बढ़ रहा है जिस कारण से अपने लू लागवा की समस्या ज्यादा रह रही है
0: बिल्कुल हीट स्ट्रोक एकदम से आप भाई घर कमाए रहवा तो कोई कूलर पंखा में इसी में आप बैठे रहवा और फिर एकदम से आप बाहर निकल के जावा तो जो शरीर है वो तैयार को नहीं हो इस प्रकार के जो अंतर है भी के लिए तो अपन हीट स्ट्रोक लाग जाए और जगह बात यह की है कि जगह कपड़ा की बात करें तो आप बाहर निकल रहे हैं तो सिर में तो आप साफ सियो गमछे सियो ढक्के निकला पर जगह काला नीला या लाल इस प्रकार का जगह गहरा रंग का कपड़ा हुए वह कहे की जो धूप अभी ने अवशोषित करे और जिसमें शरीर को तापमान की बढ़वाने लग जाए तो ढीला और जगह सूती वस्त्र ही खास तौर से हल्का रंग का बिल्कुल जी कि सफेद रंग का होया या हल्का रंग का होया वह आपा पैर के निकला
1: बिल्कुल चौकी बात है कि सूती वस्त्र आप पहनना तो अपना जो पसीने जो बन सूख ले लो शरीर ठंडो रह लो लेकिन अपन पौष्टिक आहार और हल्को भोजन भी लेना चाहिए जी साथ साथ में सलाद ले लिया दही ले ली मौसमी फल बार चाल रहे थे हरी सब्जी ले लिया खीरा तरबूज और जो भी अपने शरीर में ठंडक प्रदान करवा जो भी चीजें चले बिन ज्यादा से ज्यादा आपा ग्रामवासी और किसान भाई ने और सबने शहरी वासियों ने अपने यूज करना चाहिए अपना घर ने भी ठंडो रखना चाहिए अपना कमरा पर्याप्त हवा जो वेंटिलेशन होना चाहिए पंख हो कूलर हो इको प्रयोग करे दिन में जो खिड़कियां जब पर पर्दा लगा रखा जिससे कि

0: साधन है जो अपने अंदर नियो जिस आप लू सके वो बच जाओ।
1: बिल्कुल, जका बच्चा और जका बूढ़ा ठेरा ही मां को तो खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, चाहे कि जो मौसम है भी कमाए। आप देखा है कि टावर ने और बूढ़े ने सोम पहली जो है बीमार हुए मौसम कमाए, तो मां को जो थोड़ा के कि जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा कमजोर हुए। आपा तो देखो आपने जाप तो रख लिया, तो बूढ़ा की जकी है थोड़ा सा आपा ध्यान रखा और खान पीन का आपा ध्यान रखा। भी जो गर्मी को मौसम है उसके अनुसार ही जो है आपा अपनो जो पेय पदार्थ है बाको सेवन करा, जो भोजन है आवार समय के अनुसार जो को एक संतुलित और जो को ताजा भोजन है वो ही आपा खावा।
0: बार मान लो कोई के लू लाग जाए तो भी तो अपन कहीं उपचार भी रखना चाहेंगे, जैसे जो आप कोई के लू लाग गई बिना छायादार या ठंडी जगह पर ले जाना चाहेंगे, और वो मान लो टाइट कपड़ा पैर में ले जाए तो मैं थोड़ा ढीला कर दिया बिना शरीर पर ठंडा पानी की कोई पट्टिया भी रख दिया, और जो कोई व्यक्ति मान लो होश में आ गो तो बिना ORS भी दे जाओ और डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए। और अपन जो अगर कोई व्यक्ति बेहोश होगा ना तो भी जबरदस्त भी पानी नहीं पिलाना चाहिए, जाते बर्फ सीधा शरीर पर नहीं लगाओ क्योंकि वो गर्मी से पहली तापमान भी कुछ बढ़ रहे।
1: हाँ,
0: और भी लक्षण नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अपन।
1: देखो भी टाइम जरूरी है कि बिना एक चिकित्सा मिले और जो चिकित्सक है भी कहीं ले जाके और फिर बिना उपचार मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो गर्मी का मायने देखो कि बुखार भी आ जाए है और शरीर में कमजोर भी आ जाए है, तो इस प्रकार को जो को हीट स्ट्रोक का भी इसमें अपन बचना चाहे तो लू लागबा का ये लक्षण ही। और गर्मी का मायने आप छाया में रहवा, ठंड बैठे रहवा, पानी पीता रहवा, तो अपना शरीर सही रहे।
0: बिल्कुल सही बताया, और अपने पर्यावरण को भी ध्यान रखना क्योंकि तापमान बढ़ रही क्यों चाहिए कि इसके लिए अपन ज्यादा ज्यादा पेड़ भी लगाना चाहिए।
1: हाँ,
0: पानी भी बचाना चाहिए जिससे कि प्रदूषण कम हो लो, प्रदूषण कम हो लो तो तापमान कम हो लो, तापमान कम हो लो तो आपने जो लू और थे बार तापघात बता रहे थे बिका जो समय सेवा कम रेली, इसलिए साथ साथ में पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान रखना चाहिए।
1: ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आपा। और गर्मी की तो बात हुई, अब एक चोको सो लोकगीत होना चाहिए कार्यक्रम में नरपत भाई।
0: हाँ बिल्कुल, सुना सा

0: हाँ तो राम खुदाई बावड़ी कजोड़ मल मीणा और साथे की आवाज में लोकगीत सुने मेरे पर भाई आपा
1: अच्छा
0: लोकगीत सुनया लोकगीत को आनंद लियो। तरह तरह की बातें ही कि जमानों की प्रकार से बदल रहे समाज का मन कई चीजा बदलती जा रही है ने। अब घड़ी की सुइया इशारो कर रही है कि भी खेती बाड़ी को टेम पूरे हो चले। तो अब देव महेश भाई ने और
1: नरपत सिंह ने
0: आज्ञा करा सबने
1: राम राम सा।

आकाशवाणी जयपुर जमीर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। समीर के लिखे बोल है, जतिन ललित का संगीत।

आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत गोलमाल रिटर्न्स फिल्म से अनुष्का मनचंदा और विशाल ददलानी की आवाज में ये गीत है। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

786, ये है फिल्म का नाम। श्री राम और श्रेया घोषाल की आवाजों में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का। इस गीत को लिखा है समीर और अनजान ने और धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

तू झूठी मैं मक्कार, अरिजीत सिंह और चरण की आवाज में इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

क्रिश, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम सुनवा रहे हैं आपको कुणाल गांजावाला की आवाज में। विजय अकेला के लिए बोल है, राजेश रोशन का संगीत।

भूल भुलैया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाजों में। समीर के लिखे बोल हैं प्रीतम का संगीत।

संगीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम हम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम के पश्चात समाचार प्रसारित किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर उर्दू में प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में जगह बनाई। सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी में डच हॉकी कोचों की सराहना की। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी और संजना ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट।
2: भारत की टॉप पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के गोफ सेफेई और नूरुजीदीन को 1 घंटे और 22 मिनट तक चले मुकाबले में 19-21, 22-20, 21-16 से हराकर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल का टिकट कटाया। मलेशिया जोड़ी ने दमदार आगाज किया और उतार चढ़ाव भरे पहले गेम को 21-19 से जीत लिया। वहीं दूसरा गेम और भी ज्यादा नाटकीय रहा, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन सात्विक और चिराग ने पहले गेम के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास और संयम दिखाया। 20-20 से बराबर पर आने के बाद सात्विक ने एकदम सही जगह पर शॉट मारकर जरूरी पॉइंट बनाया और दूसरा गेम 22-20 से जीत लिया। इसी लय को बरकरार रखते हुए जोड़ी ने आखिरी गेम में अपना दबदबा बनाए रखा और गेम को 21-16 से जीतने के साथ ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: संजीव।